0: Like a Gold. भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड।
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
1: फोन 02085748410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड। CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
2: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
3: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
4: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
2: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
3: Thanks, playtime's over. Mmm. Lovely.
5: Feel the fun. Play Ojo.
4: 18 plus, gamble aware. Like a-

0: ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, अंदर से ठंडा हूँ ऊपर से गर्म हूँ।
1: अरे बाप रे बाप,
0: डर गया ना।

0: One podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
1: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।

से परी ये सुबह मस्ती भरी यो हसी जैसे परी। किस्मत को शायद याद आ गए हम, किस्मत को शायद।

0: is like a gold.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में। रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ। हमारे राम, बुक योर टिकट्स नाउ, विजिट www.eventimapolo.co.uk। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर Radio.
3: Packed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
3: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
3: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
5: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
6: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।

हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भवाइए हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोए नानक हुक्मे जे बुझे ताहू मैं कहे न कोए गावे को तान होवे किसे तान गावे को दात जाने निशान गावे को गुण वडियाइया चार गावे को विद्या विखम विचार गावे को साज करे तनखे गावे को जी लै फिर दे गावे को जापे दिसे दूर गावे को वेखे हादरा दूर कथना कथिना आवे तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाई खाए हुक्मी हुक्म चलाए राव नानक विकसै वे परवाह साचा साहेब साच ना।

ना भी जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए के जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई ता बात ना पूछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुनिए

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कौन कहावी।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए।

है साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख है सिर्फ।

जिव तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म ना करना जाई, सो पातशाह साह पत साहिब नानक रहन जाई।

अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार, कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेश। एक दूजी बोल लख होवें लख होवें लखवीस लख।

जोर न जुगति छुटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए। राती रुती चित्ती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निशान, कच पकाई उथे पाए, नान गया जापै जाए, धर्म

साहेब, ओ साहेब, पंछी पिंजरे से छूट गए, सब अपने वादे टूट गए। लो साहेब हमसे रूठ

0: लाइका गोल्ड travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
1: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
2: Can love really be lost? Can home be taken away from someone's heart?
3: ये प्यार जहर की तरह होता है पता? तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
4: अमन है इश्क मस्ताना।
2: मैं वापस आऊंगा। A film by Imtiaz Ali.
3: अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना, जिसे 78 years से देखा तक नहीं।
2: Starring Diljit Dosanjh, Vedanga Raina and Sharvari. Music by A.R. Rahman. Produced by Birla Studios and Applause Entertainment. Main Vapas Aunga in cinemas on the 12th of June.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
6: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: है
1: लाइका गोल्ड।
2: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
0: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: विजिट travelhubworld.com।
3: Selling your car can be super simple if you choose We Buy Any Car. Now in their 20th year, they're on average 11 minutes away, so help is never far. If only they could make finding a good driving song simpler. No. No. Oh, definitely not. We Buy Any Car. Selling made simple. To sell your car today, enter your reg number now at webuyanycar.com.
4: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 24 hour line.

0: गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन की दुनिया में स्वागत है श्रोताओं का। खुशामदीद जी आया नु। माय नेम इज रवि शर्मा, मनोरंजन प्रोग्राम लेकर मैं आपकी सेवा में दोपहर बाद 1 बजे तक हाजिर हूँ। और बहन भाइयों, आप सब की ओर से पहले तो थैंक्स कहूँगा काजल को। काजल, गेट वेल सून एंड गेट बैक टुमारो इन ए हेल्दी शेप। सोमवार वर्ष 2026 के जून महीने की 8 तारीख और वक्त 10:05 हुए हैं साहब। सुबह के यहाँ यूके में आपके यहाँ क्या बजा है? अरे आपके यहाँ गाना बजेगा, अभी लगाऊंगा आपके लिए। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। गीत संगीत सूचनाएं समाचार चिंतन विचार और भाई कुछ हंसी के ठाक और कुछ गंभीर बातचीत विषय। लेकिन शुरुआत करेंगे शायरी से, और शायरी में एक वादा एक इरादा कि ना एक से ना दो से हजारों से ज्यादा, ना एक से ना दो से हजारों से ज्यादा, जमाने के रंगीन नजारों से ज्यादा तुम्हें प्यार करते हैं कितना बताएं, सभी आसमां के सितारों से ज्यादा। सुनो अपनी एक मुस्कुराहट की कीमत, गुलिस्तां के लाखों बहारों से ज्यादा, गुलिस्तां की लाखों बहारों से ज्यादा। नहीं दरमियां कोई अपनों का बंधन, मगर तेरी चाहत तेरे प्यारों से ज्यादा।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: Travel Hub.
2: At all protected.
1: Leica. Feel good classics all day. This is Leica Gold.
0: और तुम्हें प्यार करते हैं कितना बताएं? सभी आसमां के सितारों से ज्यादा। यकीन नहीं आता तो गिनना शुरू कर दो।

बताइए तुझे कितना प्यार करे, 1 किलो 2 किलो 1 मीटर 2 मीटर एक। काश प्यार को मापने का कोई पैमाना होता।

0: भाई, चाचा, भतीजा, दोस्त, मित्र, ये जितने भी नाम है ना, ये सब प्यार को अभिव्यक्त नहीं करते हैं। प्यार एक जज्बा है, उसके ना देखा जा सकता है, ना तोला जा सकता है, ना मापा जा सकता है, ना भाई उसको क्या कहें, बस सिर्फ महसूस किया जाता है। कितना होगा कुछ नहीं कह सकते। राइट, दो गीत हमने परोसे आपको, और मुझे यकीन है कि आपको पसंद आए होंगे। पहला गीत हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म कुर्बानी। और भाई दूसरा गीत जो अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की है, आवाज़ों में था, एंड दैट वॉज टेकन फ्रॉम द फिल्म कुदरत का कानून। तो भाई बैक टू बैक संगीत से शुरुआत होती है प्रोग्राम की, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम ये बताते हुए कि आज भारतीय मुद्रा में पाउंड का रेट क्या चल रहा है।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो साहब, एक पाउंड ब्रिटिश स्टर्लिंग जो है वो आज आपको दिला सकता है मैक्सिमम 127.1 इंडियन रुपीज, 127 रुपए 10 पैसे भारतीय मुद्रा में ये रेट चल रहा है पाउंड का। बट भाई, सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और एनी ब्रांच ऑफ SBI बिफोर एंड ऑफ जून, देन बी इन टू विन ए 75 पाउंड्स वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स। इतना ही नहीं, ऑल्सो ए 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक वेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: At TUI, we give you more. More confidence you got the best deal thanks to the TUI Price Match Promise. More hotels designed around what you love, from swim-up suites to splash parks. And more ease with flights, transfers and hotels all in one place. Package holidays made simple. Book on app, in-store or online. TUI. Atoll and APTA protected. T's and C's apply. Selected hotels only. See website for details.
3: Ye hai Leica Gold.
4: Selling your car can be super simple if you choose WeBuyAnyCar instead of a confusing part exchange. Because with WeBuyAnyCar, you'll have cash in the bank for more bargaining power on your next car. If only they could make getting to that countryside wedding simpler.
5: Make a U-turn. Make a U-turn.
4: Oh no. WeBuyAnyCar. Selling made simple. To get a quote in 30 seconds, enter your reg number now at WeBuyAnyCar.com.

0: talking to your competitors.
1: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HartyHanks.com before your competitors do.
0: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
2: क्या कर रहा है
3: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
2: ये तो बताओ, कोई पता चला?
4: गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
2: तो शुभकामनाएं, देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
5: शीघ्र।
4: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
6: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन,
8: the voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
9: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
8: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
9: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
10: लंदन में एक महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिविनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14 से 21 जून वुडलेन स्टैनमोर के टेंपल ग्राउंड्स पर। फ्री एंट्री, सपरिवार अवश्य पधारिए। रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद। आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें। वेन्यू टेंपल ग्राउंड्स वुडलेन स्टैनमोर HA74LF। फॉर मोर डिटेल्स somyagna.com, कॉल 07932623852।
11: Eviction? Tenant dispute? Property का मसला? Kenton Solicitors London landlords और tenants के लिए fast action लेते हैं और residential और commercial conveyancing plus commercial leases handle करते हैं। अभी call करें 0208-907-2444। That's 0208-907-2444।
12: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
13: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
14: फिर मिलेगा तेरा साथ ये सोचकर, नींद उड़ती रही रात ये सोचकर, कैसे गुजरी है शब क्या बताऊं तुम्हें, बात वो सोचकर, बात ये सोचकर। खैर साहब, रात गुजर गई, उजाला हुआ और सुबह सुबह आपसे मुलाकात का माहौल बना। आइए सेलिब्रेट करते हैं मुलाकात के ये क्षण।

0: feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम में। और है ना भाइयों, खबरों की ओर मुड़ते हुए एक बात बड़ी चिंताजनक है कि लोगों में, खासकर नौजवानों में, गुस्सा, नफरत, लड़ाई झगड़े की भावना, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और खबरें कुछ इस तरह की आ रही हैं। अब वीकेंड पर क्या हुआ, एमरजेंसी क्रू वर कॉल्ड टू रिवर रोड बार्किंग एट अराउंड 11:20 PM ऑन सैटरडे नाइट एंड दे फाउंड 3 men 22, 23 और 28 साल के 3 नौजवानों को जो है जख्मी किया गया था चाकू के वार से। और इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं भाई, ब्रिटेन में चिंता का विषय है और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन समझा जाता है कि ये अटेम्प्टेड मर्डर की घटना है, छानबीन चल रही है। आइए और खबरें क्या क्या हैं नज़र मारते हैं, चलते हैं समाचारों की ओर। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से आज के प्रमुख समाचार सुनिए। भारत से आने वाली खबरों में टीएमसी नेता जहांगीर खान नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ईरान ने अप्रैल के बाद पहली बार इसराइल पर मिसाइल्स दागी हैं। और इसराइल पर ईरान के ताजा हमलों के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ गया है, यानी प्राइसेस और बढ़ गई हैं। फिलीपींस के दक्षिणी इलाके में 7.8 तीव्रता का तेज भूकंप आज जलजला आया है। आइए देखते हैं विस्तार से खबरें। ईरान और इसराइल के बीच ताजा फौजी झड़पों के बाद तेहरान में भारतीय एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जारी की है। एम्बेसी ने सभी हिंदुस्तानियों से, भारतीयों से ईरान की यात्रा न करने की अपील की है। मत जाइए उधर, लड़ाई बढ़ रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसके अलावा एम्बेसी ने यह भी कहा है कि ईरान में रह रहे भारतीय जल्द से जल्द उपलब्ध साधनों से, जो वाट एवर इज अवेलेबल बाय मींस इफ यू कैन लीव ईरान। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि हाल के घटनाक्रम को देखते हुए एम्बेसी ये बात दोहराती है कि सभी भारतीय नागरिक किसी भी तरह ईरान की यात्रा से बचे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने, IRGC ने दावा किया है कि उसने इसराइल के नेवातिम और तेल नौफ वायु सेना ठिकानों को निशाना बनाया है। इससे पहले ईरानी सरकारी टीवी ने बताया था कि तेहरान, तबरीज और इस्फहान शहरों में धमाकों की आवाजें सुनी गई थी, मतलब दोनों तरफ से अटैक किए जा रहे हैं, लड़ाई रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। भारत से आने वाली खबरों में टीएमसी के राज्यसभा मेंबर सुखेंदु शेखर रे का इस्तीफा आ गया है। उसने अपनी ही पार्टी पर इल्जाम लगाए हैं। तृणमूल कांग्रेस के भाई पश्चिमी बंगाल में कड़ी हार के बाद एक एक करके उसके नेता साथ छोड़ रहे हैं, पार्टी का या ममता बनर्जी का। सुखेंदु शेखर ने अभी राज्यसभा की मेंबरशिप और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 15 सालों के शासन को अराजक कहा है, क्रिटिसाइज किया है। फिलीपींस में भूकंप से मरने वालों की तादाद 15 हो गई है, 129 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुल्क में आए 7.8 तीव्रता के तेज भूकंप से मरने वालों की तादाद बढ़ गई है। फिलीपींस में ये हादसा हुआ है। स्थानीय नागरिक सुरक्षा कार्यालय के डायरेक्टर रोड्रिगो सोस्मेन के मुताबिक 15 में से 12 मौतें सोक्स सार्जेन इलाके में हुई हैं। ये इलाका 4 प्रांतों और एक शहर में फैला हुआ है। बताया गया है कि इस इलाके में कम से कम 129 लोग जख्मी भी हुए हैं। फिलीपींस इंस्टीट्यूट ऑफ वॉल्केनोलॉजी एंड सिस्मोलॉजी ने बताया है कि मिंदानाओ के 6 इलाकों में सुनामी की लहरें दर्ज की गई हैं। तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी वाली पार्टी टीएमसी के नेता जहांगीर खान को पश्चिमी बंगाल पुलिस की एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि जहांगीर खान नेपाल बॉर्डर के रास्ते मुल्क से भागने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान उन्हें पकड़ा गया। हाल ही में पश्चिमी बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर हुए बाई इलेक्शन की वजह से जहांगीर खान चर्चा में आए थे। क्रिकेट की बात करें, अफगानिस्तान और भारत के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, लेकिन अफगानिस्तान पहली पारी में ऑल आउट हो गए। डेब्यू मैच में चमकने वाले मानव सुथार का नाम उभर कर सामने आया है। भाई भारतीय टीम में ये नया गेंदबाज पहला मैच खेल रहा है, लेकिन पहले ही मैच में उसने चमत्कार करके दिखाया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच न्यू चंडीगढ़ मैदान में इकलौता टेस्ट मैच चल रहा है। इस मैच में भारत के लिए डेब्यू करने वाले मानव सुथार की काफी चर्चा है। मानव सुथार ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहली पारी में 6 विकेट चटकाए हैं। उन्होंने किफायती गेंदबाजी करते हुए 22 ओवर्स में सिर्फ 33 रन दिए, 6 विकेट लिए। भारतीय टीम इस मैच में बड़ी मजबूत स्थिति में है। पहले बल्लेबाजी में दम दिखाने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है। ताज़ा स्कोर हम बताएं आपको, भारतीय टीम ने पहली इनिंग में 564 रन बनाकर पारी डिक्लेयर की थी और फिर मेहमान टीम को अफगानिस्तान की टीम को 152 रन पर समेट दिया और उसके बाद फिर उन्हें दोबारा से बैटिंग करने का न्योता दिया गया। ताजा स्कोर हम आपको बताएंगे, अब से थोड़ी देर बाद सुनते रहिएगा। अमेरिकी शेयर बाजारों में पिछले शुक्रवार को आई तेज गिरावट के बाद इसराइल और ईरान के बीच ताजा अटैक से भारत समेत एशिया के शेयर बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि बीएसई का 30 शेयर्स वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में करीब 750 अंक टूट गया है। ईरान ने संडे को इसराइल पर कई मिसाइलें दागी और इसके जवाब में इसराइल ने भी ईरानी ठिकानों पर अटैक किए हैं। ईरान की ओर से इसराइल पर मिसाइल हमलों और बाद में इसराइली एयरफोर्स की जवाबी कार्रवाई के बाद आज सुबह एशियाई बाजारों में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत के भाई एक गेंदबाज की चर्चा अभी हमने की, लेकिन एक बैटर या बैट्समैन कहिए, खिलाड़ी, वो भी विश्व भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। नाम है उनका वैभव सूर्यवंशी। साउथ अफ्रीका के फॉर्मर क्रिकेटर्स एबी डिविलियर्स ने इस क्रिकेटर की जबरदस्त तारीफ की है। कहा है कि अगर वैभव चाहें तो रेड बॉल क्रिकेट खेल सकते हैं। आ रही है टीम भाई भारत की इंग्लैंड और आयरलैंड के दौरे पर, देखेंगे इसका प्रदर्शन। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
2: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
3: आइए लौटते हैं संगीत की ओर। संगीत में गीतों की शब्दावली में कुछ शरारतें और कुछ शराफतें। आंखों का काम है लड़ना और लड़ाना। आंखों का काम है लड़ना और लड़ाना, कोई तो बीच में आना चाहिए, लोगों को चश्मा लगाना चाहिए ताकि आंख मारे तो किसी को लगे नहीं।

चाहू तो हिला दू। छपरा भैया, छपरा एक डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है बिहार में। रख अपने पास।

स्वागत है आपका मनोरंजन कार्यक्रम के दूसरे भाग में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर मैं रवि शर्मा आपको स्वागतम कहता हूं। और बहनों भाइयों, कार्यक्रम के इस दौर में आपको मैं चिंतन पेश करता हूं, थॉट फॉर द डे, आज का विचार। विचार कीजिए, ध्यान से सुनिए और फिर भाई औरों के साथ भी इसे बांटिए, साझा कीजिए। आज के विचार के लिए हमें आलेख भेजा है सटन से प्रवीण ढोंचक ने। प्रवीण भाई लिखते हैं कि किसी व्यक्ति की कमजोरी को, उसकी बुराई को बार बार दोहराने से, उसे अपमानित करने के इरादे से, लोगों में उसको फैलाने से, ये मत समझिए कि आप बच जाएंगे, वो बुराई आपके भीतर भी एंटर कर जाएगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके बुराई का चर्चा बंद करें, उसकी अच्छाइयों को उजागर करें ताकि वो सुन करके उन पर गर्व कर सके और वह अच्छाई की ओर प्रेरित हो सके। बुराई जितनी चर्चित होगी उतनी फैलेगी, अच्छाई जितनी चर्चा में आएगी, बातचीत में आएगी, वो भी फैलेगी। तो अच्छाई फैलाइए ना। प्रस्तुत है प्रवीण भाई का भेजा आलेख, आज का चिंतन।

क्लास में चोरी हो गई। बच्चे ने शिकायत की, सर मेरी डेस्क पे रखी थी मेरी घड़ी, मैंने उतार के रखी थी और मैं 5 मिनट के लिए इधर उधर, क्या हुआ, क्लास से बाहर गया, वापस लौटा तो मेरी घड़ी गायब थी। टीचर ने कहा, अभी तो कोई और बच्चा क्लास से बाहर नहीं गया है, इसका मतलब घड़ी किसी ने क्लास में ही उठाई है। बच्चों, जिसने भी उठाई है वापस कर दो। फिर टीचर ने थोड़ा गंभीर होते हुए सोच के कहा, देखो बच्चों, मैं नहीं चाहता कि किसी का अपमान हो, मैं नहीं चाहता कि किसी पर चोर का ठप्पा लगे, बदनाम हो, इसलिए ऐसा करते हैं, एक काम करते हैं, सभी स्टूडेंट्स कान खोलकर सुन ले, अपनी आंखें बंद कर लेंगे और जिसने भी घड़ी चुराई है वो चुपचाप घड़ी वापस उस स्टूडेंट की टेबल पे रख दे, कोई नहीं देखेगा, सब आंखें बंद कर लेंगे। इस तरह से किसी का नाम भी बदनाम नहीं होगा, घड़ी वापस आ जाएगी। किसी को अपमानित करना हमारा उद्देश्य नहीं है, बुराई को खत्म करना, बुरे को चिन्हित करना और उसको चोर का नाम दे करके आगे भविष्य में एक कॉम्प्लेक्स में जीने के लिए हम मजबूर नहीं करना चाहते। बोलो बच्चों, मंजूर है? सब बच्चों ने हाँ कहा। टीचर ने कहा, ठीक है, मैं 1 2 3 कहूंगा, सब बच्चे आंखें बंद कर लेंगे और उसके बाद 60 सेकंड्स के बाद जब मैं कहूंगा तो आंखें खोलेंगे। सुन लिया? सब बच्चों ने मान लिया। टीचर ने 3 काउंट किए, सबने आंखें बंद कर ली। टीचर ने फिर याद दिलाया, सब अपनी आंखें बंद करें, कोई आंखें ना खोले। 1 मिनट के बाद टीचर ने कहा, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आंखें खोल के देखा तो जिस बच्चे की घड़ी गायब हुई थी, चोरी हुई थी, उसकी डेस्क पे उसकी घड़ी वापस आ चुकी थी। उसने खुशी खुशी अपनी घड़ी पहन ली। टीचर ने आगे कोई चर्चा नहीं की, उद्देश्य पूरा हो गया, कहीं कोई शिकायत नहीं, कोई छानबीन नहीं, बस चोरी न करने का मशवरा, ये सलाह देकर के मामला रफा दफा कर दिया गया। अब साहब बरसों बाद देखिए, वो टीचर एक केस में, एक कोर्ट में पेश हुआ। जज ने बड़े सम्मान से टीचर को पहचान कर कहा, सर आप तो सम्मानित व्यक्ति हैं, आपके खिलाफ कोई भी मुकदमा सच्चा नहीं हो सकता। फैसला टीचर के पक्ष में गया, लेकिन जैसे ही मुकदमा खत्म हुआ तो जज ने बाहर आकर टीचर के पैर छू लिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप जज साहब? बुजुर्ग टीचर ने पीछे हटते हुए कहा, कहने लगा, सर आपकी बदौलत ही मैं आज जज हूं, आपकी बदौलत ही मैं एक सम्मान की जिंदगी जी रहा हूं। क्या कह रहे हो तुम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, टीचर ने पूछा। तो वो जज कहने लगा, सर मैं वही स्टूडेंट हूं जिसने क्लास में घड़ी चुराई थी, आपने सबकी आंखें बंद करवा के मुझे मौका दिया सुधरने का, मैंने घड़ी वापस डेस्क पे रख दी। पर सर आप भी कमाल के हैं, आपने किसी को कभी भी यह नहीं बताया कि वो चोर मैं था। टीचर ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। देखिए जज साहब, आप अपना काम बड़ी अच्छी तरह से बखूबी कर रहे हैं, आप करते रहिए सम्मान के साथ। नहीं सर, मैं ये गिल्ट निकालना चाहता हूं, इस अपराध बोध से मुक्त होना चाहता हूं, कॉम्प्लेक्स में जी रहा हूं तब से, मैंने चोरी की थी, बाकी सब बच्चों की आंखें बंद थी पर आपने तो देखा। टीचर मुस्कुराए, नहीं बेटा मैंने नहीं देखा, मैंने सबकी आंखें बंद करवाई थी, सबसे मतलब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैंने खुद भी अपनी आंखें बंद कर ली थी, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता किसने चुराई थी। अब तुम कहते रहो, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि
सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो वो भूला ना कहलाए। तुमने घड़ी वापस की, उसके बाद मामला खत्म। आज तुम एक सम्मानित पोस्ट पर हो बेटा। गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। उन्हें बार बार दोहरा करके किसी को अपमानित करने के इरादे से बुराई को बढ़ाना नहीं चाहिए, उसे जितना जल्दी हो सके मिटाना चाहिए, खत्म करना चाहिए। भूल सभी से होती आई, कौन है जिसने न ठोकर खाई। भूलों से सीखे जो मंजिल उसने पाई। सीखना चाहिए, इन्हें याद करके दोहराना नहीं चाहिए। किसी की अपमान के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। रात कटेंगी, होंगे उजाले, फिर मत गिरना ओ गिरने वाले। इंसान वो जो खुद संभले औरों को भी संभाले। इसलिए इरादा पक्का कर लो, समझौता गमों से कर लो। रात कटेंगी, होंगे उजाले, फिर मत गिरना ओ गिरने वाले। इंसान वो जो खुद संभले औरों को भी संभाले।

0: साथी भाई आप बधाई देना चाहते हैं पैम सूरी को। पैम जी ने भाई डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, वो हो गई है डॉक्टर पैम सूरी। भाई क्या कहते हैं, शो बिजनेस के फील्ड में बड़े बड़े उन्होंने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए हैं और बहुत सारे कलाकारों को प्रोत्साहित किया है, प्रोत्साहन दिया है, और शो बिजनेस से वो बड़े ही नज़दीक से जुड़ी हैं बरसों से। तो कल एक कार्यक्रम में इससे सेलिब्रेट किया गया, कल नहीं मेरे ख्याल वीकेंड पर किसी दिन, तो हमारी ओर से भी पैम सूरी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। उन्होंने अपनी लिखी एक किताब भी रिलीज की है, पुस्तक, जिसमें बहुत सारे प्रेरक प्रसंग हैं। प्रवीण भाई की ओर से और भाई हम सब की ओर से भी पैम सूरी को इस उपलब्धि पर, अचीवमेंट पर बहुत बहुत मुबारकबाद। चिंतन को समेटते हुए याद दिला दो भाई, चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद मनोरंजन प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। आज का चिंतन, आज का विचार अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके याद दिला रहे हैं, रेट अच्छा है भाई, पैसे भिजवाइए और साथ में उनकी एक खास ऑफर जो आजकल चल रही है उसका भी फायदा उठाइए। टुडेज रेट इज फॉर 1 pound स्टर्लिंग यू कैन गेट अप टू 127.1 रुपीज, 127 रुपये और 10 पैसे भारतीय करेंसी में। इसके अलावा भाई वो कहते हैं कि सेंड मनी टू इंडिया वाया SBI योनो ऐप और ब्रांच बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इन टू विन 75 pounds वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds। ऑल्सो 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। TNC apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai.
1: Like a gold.
3: Like a gold.

0: Co food containers are recyclable, reusable, and microwavable.
1: School ke liye, office ke liye, uni ke liye, Satco food containers.
0: The perfect food storage solution, Satco food containers.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
3: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Can love really be lost? Can home be taken away from someone's heart?
5: ये प्यार जहर की तरह होता है, पता? तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
6: अमन है इश्क मस्ताना।
4: मैं वापस आऊंगा। A film by Imtiaz Ali.
5: अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना, जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं।
4: Starring Diljit Dosanjh, Vedanga Raina and Sharvari. Music by A.R. Rahman. Produced by Birla Studios and Applause Entertainment. Main Vapas Aunga. In cinemas on the 12th of June. Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
7: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
4: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smart and walk away richer.
7: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915, or visit cashbackremortgage.co.uk.
4: Cashback Remortgages, your mortgage should work for you.
8: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India,
9: live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
8: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
9: Exclusive radio partner, Lyco Radio Network.
10: Transfer money home and turn every transaction.

0: जुर्रत फिल्म का गीत। भाई यूजुअली हम इसे संभाल के रखते हैं करवा चौथ के लिए या फिर किसी ऐसे अवसर के लिए जब सुहागने अपने सौभाग्य की लंबी उम्र के लिए दुआ करती हैं गीत के माध्यम से। पर कंप्यूटर को तीज त्योहार का इतना भाई ज्ञान नहीं है, लेकिन लता जी की आवाज़ में ये गीत एक अरसे बाद सुनकर के अच्छा लगा होगा आपको। वेल दैट वाज लता मंगेशकर, जुर्रत फिल्म का गीत आपने सुना। और इससे पहले बैक टू बैक संगीत में ए यार सुन यारी तेरी, दैट वाज टेकन फ्रॉम द फिल्म सुहाग। तो बैक टू बैक संगीत सुन बैठे हम आ गए हैं इस मोड पर।
1: Laika Gold. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.
0: Karnatak Sangeet ka ehsaas. Rafi sahab aur Lata ji ki aawazon ke paas. एकदम ऐसा लगता है जैसे भाई साउथ इंडिया में पहुंच गए हैं। और ये तर्ज और ये स्टाइल और ये गायन,

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: What a song by Dil Ne Pukara Tha film ka naam, aur I think 1967 mein aayi thi ye film. Do do hero thi, Sanjay bhi, Sanjay Khan aur Shashi Kapoor bhi the film mein, aur kai geet iske jo hai wo hit hue us zamane mein, aaj bhi sunte hain, acche lagte hain. Right, to sahab geet sunwa diya humne aapko, ab baat cricket ki karne ko ji chahta hai. Bahut sare hamare shrotaon ki dilchaspi rehti hai cricket mein, aur bhai cricket mein match chal raha था, भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच खेला गया और यह मैच न्यू चंडीगढ़ के ग्राउंड में भारत ने जीत लिया है. कितने रन से? एक इनिंग और 300 रनों के अंतराल से, भाई भारी भरकम अंतराल. हालांकि अफगानिस्तान की टीम टेस्ट मामले में थोड़ी नई है, लेकिन वनडे इंटरनेशनल और T20 में तो भाई टक्कर देती है वो टीम. पर ये टीम भारतीय ग्राउंड्स से अच्छी तरह परिचित है. तो साहब भारत ने पहली इनिंग में 564 रन बनाए 8 विकेट पर, पारी डिक्लेयर की. और फिर अफगानिस्तान ने पहली इनिंग में 152 रन बनाए और फिर भाई उनको वापस बुलाया, क्योंकि ये 200 रन के अंतराल से कम था स्कोर. तो फिर दूसरी इनिंग में 112 रन पर सिमट गई अफगानिस्तान की टीम और इस तरह से 300 रन और एक इनिंग से भारत ने ये मैच जीत लिया. अब भाई हमारे श्रोता पूछ रहे हैं, शर्मा जी पुरुषों की क्रिकेट का जिक्र करते हो, महिलाओं का कोई ख्याल नहीं आपको? है भाई, आप तो जानते हैं महिलाओं का ख्याल सिर्फ मुझे ही होता है, बताऊं आपको. महिलाओं का भारत और वेस्ट इंडीज के बीच वुमेन्स वर्ल्ड कप वार्मिंग मैच, भाई वो तैयारी कर रहे हैं ना वर्ल्ड कप की, आने वाला है महिलाओं का वर्ल्ड कप क्रिकेट का. तो भाई T20 मुकाबला भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेला जा रहा है. भाई एक तो ये हुआ कि वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया. दूसरी बात ये कि बारिश के कारण मैच लेट हो गया भाई और देर से शुरू हुआ. कार्डिफ में ये मैच चल रहा है. इस वक्त भारत का स्कोर 85 रन है. उसके दोनों ओपनर बैट्समैन भाई वो दोनों आउट हो चुकी हैं और दोनों ने अच्छी शुरुआत दी थी, यानी 60 रन तक कोई विकेट नहीं गिरा था. 5 ओवर में उन्होंने 59 रन जुटा लिए थे, लेकिन फिर दोनों बैटर जो हैं वो आउट होकर वापस जा चुके हैं. इस समय भारत का स्कोर 85 रन 2 विकेट के नुकसान पर और ये स्कोर उन्होंने सिर्फ 7 ओवर में जुटा लिया है, 7.5 ओवर. तो 8वां ओवर चल रहा है, 85 रन 2 विकेट के नुकसान पर. यह है भारत की महिलाओं का स्कोर वेस्ट इंडीज के खिलाफ. आगे आगे भाई मैच चलेगा तो स्कोर के आंकड़ों से हम आपको जोड़े रखेंगे. अब तो आप मान गए ना कितना ख्याल रहता है मुझे महिलाओं का, मेरा मतलब है कि विमेन क्रिकेट का, और कोई जिक्र ही नहीं करता.
0: मनोरंजन विद रवि शर्मा. एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट
2: और लाइक का एक्स्ट्रा में हमारा नया एपिसोड धूम मचा रहा है भाई, पॉडकास्ट एपिसोड 19, जिसका टाइटल है लिव इन रिलेशनशिप्स. ये बड़ा पॉपुलर हो रहा भाई ये शब्द, ये टाइटल. और यहाँ ही नहीं, दूसरे देशों में भी, भारत में भी. आर लिव इन रिलेशनशिप स्टिल अ टैबू इन द कल्चर? भाई ये सोचने वाली, विचार करने वाली बात है और इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब वो तलाशे गए हैं. रेडियो वाली होस्ट कर रही है, इसे देखना मत भूलिएगा. लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड सम अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर ये अवेलेबल है.
0: लाइक एक्स्ट्रा इज हियर. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: ये है Leica Gold.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट TravelHubWorld.com. com.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danu. Prime location,
5: high appreciation
6: in Dubai.
7: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
8: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
7: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
8: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
7: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
8: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
7: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
8: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
0: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Laika Radio.
9: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24-hour line.
10: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
5: Landed. Good news. Aapka favorite iTech, ab TRS Cash and Carry Southall mein. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. For iTech at Unit 123 South Bridgeway, Southall, UB24AX. Once you visit, you come again and again.
11: 16 days to China, guaranteed departure on 24th September with 100 off for the first 10 if booked before the end of this month. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe.
12: Making summer feel better on the Leica Radio Network.

0: मैं तुमसे प्यार करता हूं, गारंटीड झूठ बोलता है। भाई जो प्यार करते हैं उन्हें कहने की क्या जरूरत पड़ती है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, वो तो छलकता है, आंखों से टपकता है। वल ये पैगाम साहब बगैर बोले पहुंच जाता है। खैर, रफी साहब की आवाज में हमने आपको ये गीत सुनवाया। और भाई इससे पहले जो गीत आपने सुना था, दैट वाज तेरा साथ है कितना प्यारा, किशोरदा और सपना मुखर्जी की आवाजों में था, फिल्म जांबाज से। भाई बैक टू बैक संगीत सुनवाते हुए हमने प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी दौर का आगाज कर लिया है। और याद दिला दूं आपको कि मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं आपकी सेवा में बहनों भाइयों दोपहर बाद 1 बजे तक हाजिर हूं। इस समय ब्रिटिश घड़ियों में 12:13 हुए हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू।
1: We are UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: और साहब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके के रेट्स में आपको बता रहा हूँ, अगर पैसे अपनों को भिजवाना चाहते हैं तो कहते हैं कि रेट भी अच्छा है और समय भी सही है। अगर आप अपनों को पैसे भिजवाना चाहते हो, 1 पाउंड के बदले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके दे रहे हैं 127.1 इंडियन रुपीस, 127 रुपये और 10 पैसे। साथ में याद दिला रहे हैं वो ऑफर जो आजकल भाई जून के महीने के दौरान अवेलेबल है, सेंड मनी टू इंडिया via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day. When you send over 1,000 pounds, this is available. और भाई इसके अलावा 1 ग्राम गोल्ड कॉइन every week you can win when sending over 2,000 pounds. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages, and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Yeah, like a gold.
3: Selling your van can be super simple if you choose We Buy Any Van. They're on average 11 minutes away, so you can get it all sorted in under an hour. If only they could make keeping your van clean simpler. And spotless.
4: Oh, for crying out loud.
3: We Buy Any Van, selling made simple. To get a quote in 30 seconds, enter your reg number now at webuyanyvan.com.
5: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
6: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
7: Attention meat lovers of Rayner's Lane.
8: This is huge.
7: Thadi Kalal is opening in Rayner's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
8: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
7: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
8: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rayner's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
7: Thadi Kalal, Rayner's Lane. There is only one.
9: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
10: Atif Aslam live in the UK.
9: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
10: Book your tickets now at AXS.
9: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
10: Exclusive radio partner, Leica Radio.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
11: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
12: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danio. Prime location,
11: high appreciation
12: in Dubai.
13: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
14: अरे गुरु, आपके शो के टिकट ढूंढ रहा हूँ.
13: ये तो बताओ, कोई पता चला?
15: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून.
13: शुभकामनाएं, देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
16: शीघ्र शीघ्र

0: with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
1: Departure 5th of September. Call now on 0203 773 633.
0: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
2: So, your decaf, oat milk, extra but not piping hot, 4 pumps of caramel, no sugar, small latte in a large cup. That will be 10 minutes.
3: No worries, I'm having fun on Play Ojo.
4: Keep it fun with Play Ojo's safer gambling tools, including take a break and time checks to keep track of your play.
2: Here's your decaf, oat milk, extra but not piping hot.
3: Thanks, playtime's over. Mmm, lovely.
5: Feel the fun, Play Ojo.
6: 18 plus, gamble away.
7: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
8: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
9: और भरा भाइयों, नए सप्ताह की शुरुआत एक नए आर्टिस्ट ऑफ द वीक के साथ। लेकिन भाई, कलाकार बहुत पुराना है और साहब बच्चे बच्चे की जुबान पे उनका गाया हुआ गाना है, लेकिन सुना है कि वो जो भी काम करते हैं परफेक्ट करते हैं। यानी आप उन्हें सुरमा बेचने का काम भी सौंप दे तो भाई बहुत अच्छी खासी कमाई करेंगे वो। तो साहिबान मेहरबान कदरदान, कान का सुरमा नाक की शाही लेने का। कान में कौन सा सुरमा होता है? आँख का सुरमा निराला, ये है सुरमे वाला। किशोर कुमार आर्टिस्ट ऑफ द वीक।
10: सुरमा मेरा निराला,

ये वक्त ये जमाना जब ना लगे सुहाना फिर मेरे पास आना, खादिम हूँ मैं पुराना, रखता जो कुछ नजर है

0: सा हल्का। सुनते हो मेरे भाई, फेरो तो एक तलाई, कीमत है तीन पाई, है कोई नजर वाला, है कोई नजर वाला।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients.

0: ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
1: और इससे पहले कि भाई इनका स्पॉन्सर्ड गीत हम आप तक पहुंचाए, ये बता दें कि इस सप्ताह के कलाकार हैं किशोर कुमार और किशोर दा की आवाज़ में एक वो सुरमे वाला गीत हमने सुनवा दिया, पर सप्ताह भर भाई एक गीत स्पेशल उनकी आवाज़ में हम आपके सामने परोसा करेंगे और आप उसे लाइक करेंगे गारंटीड। अब ये गीत जो आ रहा है ये आपको याद दिला रहा है एक ऐसी अभिनेत्री की जो भाई फिल्मों में आई थी तूफान की तरह, आज भी वो छुपट रोल्स में नजर आती हैं, लेकिन आज वो अपना जन्मदिन मना रही हैं। कौन है ये अभिनेत्री, गीत सुनकर के पता लगाइए। बड़े गंभीर रोल किए हैं भाई, जब आई थी तो ग्लैमरस क्या कहते हैं हीरोइन थी और सुपर हिट हो गई थी उस जमाने के मेगा स्टार के साथ शादी करके, और फिल्म भी बहुत सुपर हिट हुई थी इनकी भाई पहली फिल्म, लेकिन फिर दिए बड़ी सुलझी हुई अभिनेत्री बन गई। कौन है ये?

0: ये गीत सुनकर याद आई फिल्म रुदाली। रुदाली भाई वो जो किराए पर मिलती है रोने के लिए, व्हाट ए ट्रेडिशन कि भाई किसी के यहाँ अगर कोई डेथ हो जाए तो भाई रोने वाली किराए पर मिलती थी। अब कहीं कहीं ये परंपरा शायद आज भी जीवित हो। वाला उस फिल्म में बड़ा ज़बरदस्त रोल किया था फिल्म अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया ने। और भाई डिम्पल जी आज अपना जन्मदिन मना रही हैं, 8 जून 1957 में पैदा हुई थी। भाई आज ही के दिन वैसे शिल्पा शेट्टी भी कुंद्रा भी पैदा हुई थी, वो 1975 में पैदा हुई है, 1957 में, आंकड़ा बस इधर उधर होता है। और ज़बरदस्त अभिनेत्री, आज हम उनको हैप्पी बर्थडे कहते हैं, ये डिम्पल कपाड़िया जी। बॉबी फिल्म में क्या तहलका मचाया था इन्होंने अपने आगमन से। तो साहब और भी कई लोगों के जन्मदिन है, आज आगे चल के जिक्र करेंगे।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
0: और टिल्डा वालों की ओर से गीत सुनवाने से पहले बता दूं भाई, लाइका रेडियो नेटवर्क टीम्स अप विद जी टीवी फॉर द स्टेज शो हमारे राम, जो जुलाई में आ रहे हैं यहाँ भाई लेकर के, टेकिंग प्लेस बिटवीन 9th and 12th July एट लंडन्स एवेंटी में अपोलो, ये हैमरस्मिथ में है। इट स्टार्स आशुतोष राणा रावण की भूमिका में होंगे और राहुल बूचर जो है वो राम की अभिनय में होंगे। तो साहब देखना मत भूलिएगा, ये हमें याद दिलाना था आपको। अब मैं बात कर रहा था जन्मदिन मनाने वाले कलाकारों की, और साहब डिम्पल कपाड़िया, शिल्पा शेट्टी के अलावा और कौन कौन आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मैनी पीपल, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हमारे बैसन साहब याद दिला रहे हैं कि आज वो जो एक बेबी फरीदा होती थी भाई फिल्मों में, राम और श्याम में जिस दिलीप कुमार का डबल रोल था, लेकिन एक बच्ची उसमें है जिसका जन्मदिन मनाते हुए आई हैं बहारें मीठे जुल्म सितम गीत गाते हैं दिलीप कुमार, वो बेबी फरीदा का बर्थडे था। बेबी फरीदा उसमें, आई डोंट नो क्या नाम था फिल्म में उनका, लेकिन वो बच्चों के रोल में बहुत सारी फिल्में उन्होंने की, बाद में दूसरे भैया मैच्योर रोल भी किए। उनका आज बर्थडे है। और आज जन्मदिन एक हास्य अभिनेता का भी है, कौन भाई आपको जानकर हैरानी होगी कि उन पर भी हमने गीत ढूंढ लिया है। और गीत कौन सा है देखिए, फिल्म परिवार में एक गीत था जो राजेंद्र नाथ पर पिक्चराइज्ड हुआ। राजेंद्र नाथ हास्य अभिनेता, अरे साहब गाना तो प्रेम चोपड़ा पर भी पिक्चराइज हमने ढूंढ लिया था, लेकिन राजेंद्र नाथ का आज वो दुनिया में होते तो अपना जन्मदिन मना रहे होते। दुनिया में नहीं है लेकिन भाई उनके संवाद, उनकी हास्य वाली भूमिकाएं आज भी गुदगुदाती हैं, हंसाती हैं लोगों को। ये गीत उन पर पिक्चराइज हुआ था।

लंदन पेरिस घूम के देखे दिल भर एक से एक, पर दिल वालों की दिल्ली में मेरे दिल को लगी है ब्रेक। दिल हो गया दिल्ली वाली का, दिल्ली गए तो दिल्ली वाली के, मुंबई गए तो मुंबई वाली के।

0: राजेंद्र नाथ 8 जून 1931 में पैदा हुए थे और 13 फरवरी 2008 में उनका निधन हो गया। पर भाई जितनी फिल्मों में वो दिखाई पड़े लोगों को उन्होंने हंसाया गुदगुदाया, कुछ गंभीर अभिनय भी किए, चेहरे पर एक्सप्रेशन ऐसे लाते थे कि लोगों को हंसी आती थी। ये गीत उन पर पिक्चराइज हुआ था मुकेश जी की आवाज में, साथ में स्वर मिला रही थी उषा टिमोथी। और भाई आपके घर परिवार में भी अगर किसी का जन्मदिन है तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हमारी ओर से बधाई शुभकामनाएं स्वीकार
1: कीजिएगा।
2: ये है
3: Like a Gold
0: TravelHubWorld.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
2: रवि शर्मा ऑन Like a Gold
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Visit TravelHubWorld.com. You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath. With over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
4: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
5: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share, and we give the rest back to you as cashback.
4: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
5: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
4: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
6: Can love really be lost? Can home be taken away from someone's heart?
7: ये प्यार जहर की तरह होता है पता? तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
8: अमन है इश्क मस्ताना।
6: मैं वापस आऊंगा। A film by Imtiaz Ali.
7: अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना, जिसे 78 years से देखा तक नहीं।
6: Starring Diljit Dosanjh, Vedanga Reina and Sharvari. Music by A.R. Rahman. Produced by Birla Studios and Applause Entertainment. Main Vapas Aunga in cinemas on the 12th of June.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit StarTours.com. co.uk.
12: Hey, friends के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ Netflix and chill, a desi tadka is total risk, है ना?
13: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips, crunchy, tasty, and total desi swad in 4 मजेदार flavors.
12: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
14: Your call is important to us. You are currently number 25 in the queue.
15: 25? Seriously?
14: Sounds like Ojo time.
15: Nice idea. Feel the fun with Play Ojo, the online casino with all the latest live casino and slot games. New players get 50 free spins on Big Bash Bonanza, plus instant payouts on winnings.
14: Sorry about the wait. How can I help?
15: You can help me celebrate. I won.
16: Feel the fun. Play Ojo.
17: First deposit only. Most wins are instant. 18 plus gamble aware. T's and C's apply.
18: Like a Radio Network. Proud hospitality partner. Ragasan.
1: tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
3: The Ravi Sharma Show on Leica Gold.
0: एक बात याद दिलाना भूल गए भाई, आपको याद दिला दूँ साउथ हॉल ट्रेवल की ओर से वो संदेश के भाई इन गर्मियों में ज़रूर छुट्टियों पर जाकर आइए और इनकी सेवाओं का फ़ायदा उठाइए। साउथ हॉल ट्रेवल कहते हैं कि एक्सप्लोर बीच ब्रेक सिटी एस्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड फ्लाइट्स होटल्स एंड एटॉल प्रोटेक्शन एज वेल। भाई 40 वर्षों का एक विश्वास और ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड के विजेता हैं साउथ हॉल ट्रेवल। कॉल देम ऑन 0208 5748410।

छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, मतलब क्या है कि चलता फिरता ठेका बन जाओ दारू का। लीजिए साहब, आपसे इजाजत लेने का समय हो गया है। मेरी बात हंसी में मत डालो, मेरी बात पे थोड़ा गौर करो। हालात का रोना रोते हो, जज्बात पे थोड़ा गौर करो। थोड़ा सा करम मेरी आंखों पे, मेरे हाथ पे थोड़ा गौर करो। शायद बिछड़ू तो पछताओ, अपने साथ पे थोड़ा गौर करो। साथ निभाने का वादा करते हुए चलने का इरादा करते हैं। अगली मुलाकात कल सुबह 10 बजे की खबरों के बाद। तब तक के लिए रवि शर्मा को अनुमति दीजिए और बाली भाई का इंतजार कीजिए। हैव ए सुपर्ब डे, बाय बाय।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

ओह माय गॉड, गाना कब खत्म हो गया पता भी नहीं चला, बिकॉज दीज आर दी एवरग्रीन सॉन्ग्स एंड वी आर एक्चुअली विशिंग नन अदर देन असली नाम अमीना कपाड़िया. डिड यू नो दैट? वेल नाउ यू डू. अमीना कपाड़िया, यस, उनकी बर्थडे, डिंपल कपाड़िया की 69th बर्थडे आज है. एंड 14 साल की उम्र में राज कपूर ने उनको बॉबी फिल्म के लिए बुक किया था, जो 1973 में रिलीज हुई व्हेन शी वाज 16 इयर्स ऑफ एज, एंड शी गॉट अ फिल्म फेयर अवार्ड फॉर दैट. एंड देन शी मैरिड राजेश खन्ना जस्ट बिफोर द रिलीज ऑफ बॉबी इन 1973, एंड दे हैड टू ब्यूटिफुल डॉटर्स, Twinkle and Rinky. And then she returned to films in 1984. Tab unki umr thi 27 saal ki. That was 2 years after separation from Rajesh Khanna. I don't want to go deeper into it because it's her birthday and we are not talking about controversies or the sad part of her life. We are wishing her a happy birthday and she should enjoy it to the fullest. Her sister is Simple Kapadia and comes from a very, very aristocratic and a rich family. And inke pitaji ne jab wo bachi thi tab se inhone kaha tha, 8-10 saal ki thi tab se unhone kaha ke tujhe acting karna chahiye filmon ke liye. And he encouraged her to go for acting. Now it was Sagar film. अभी आपने जो गाना सुना सागर किनारे, व्हाट अ हिट, सुपर डुपर हिट फिल्म थी वो. एंड उस फिल्म 1985, दैट वाज अ बिग कमबैक फॉर हर. एंड देन सागर 1984 की फिल्म में उनको अवार्ड मिला, दैट वाज इन 1985. एंड देन काश फिल्म 1987 में विद ऑफ कोर्स जैकी दा, जैकी श्रॉफ के साथ. एंड देन दृष्टि, दृष्टि फिल्म 1990 की थी. एंड शी गॉट अ BFJA अवार्ड, विच इज बंगाल जर्नलिस्ट एसोसिएशन, उनका अवार्ड उनको मिला था. एंड देन फिल्म लेकिन 1991 की, उसमें तो क्या म्यूजिक था. लेकिन फिल्म में उनको नॉमिनेशन मिला था फॉर एन अवार्ड, बट व्हेन आई सॉ द फिल्म आई थॉट शी डिजर्व्ड एन अवार्ड. हृदयनाथ मंगेशकर का म्यूजिक था उसमें, गुलजार साहब ने लिरिक्स लिखी थी. एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल फिल्म लेकिन 1990. अब मैं, वी आर ओनली अलाउड टू प्ले वन सॉन्ग आउट ऑफ 1990s, सो यहाँ पे मेरी गाड़ी रुकेगी जब लेकिन और काश फिल्म के गाने मैं सुनाऊंगा. उसके बाद हम एक ट्रिब्यूट करेंगे ऑफ अ ग्रेट मैन who had never been appreciated until recently. And that is, you know, Shankar Jaikishan ka naam to sab jante hain. Unke do assistant the. That was Sebastian D'Souza and rhythm section, pura jo sambhalte the percussion instruments ka. That was Dattaram Wadkar. Dattaram Wadkar is very well known for his theka, jo bajate the dholak pe. उसको दत्तू ठेका बोलते हैं. तो उनको इंचार्ज बना दिया गया था. उनकी कहानी मैं बताऊंगा आपको इन द सेकेंड आवर. लेकिन फर्स्ट आवर में, आफ्टर द फोर सॉन्ग्स ऑफ डिंपल कपाड़िया, आई शैल प्ले 3 सॉन्ग्स इन विच डफ वॉज प्लेड. डफली जो होती है वो बजाई दत्ताराम ने. एक में सोटियों के साथ विद स्टिक्स, और एक में उंगलियों के साथ. अभी कौन सा गाना था वो और कौन से गाने थे जो जिसमें इन्होंने डफ बजाया था और सुपर डुपर हिट हो गए वो गाने, हम उनके बारे में बात करेंगे. और उनके 3 गाने सुनकर सेकेंड आवर में आई टेक यू इनटू द जर्नी ऑफ दत्ताराम वाडकर ऑल द वे फ्रॉम गोवा. 1942 में ही लैंडेड इन टू बॉम्बे. एंड देन He was introduced to Sajjad Hussain, a great music director, composer.
एंड ही लर्नड यू कैन से क्लासिकल राग्स फ्रॉम हिम फॉर 3 मंथ्स. उसके बाद क्या हुआ,

0: पुलिस वाला।
1: श्री 420 का ये गाना एंड रिदम सेक्शन पूरा हैंडल करते थे दत्ताराम वाडकर। वी आर रिमेम्बरिंग हिम ऑन हिज 19th डेथ एनिवर्सरी। ही पास्ड अवे ऑन 8th ऑफ जून 2007। इट वाज अ वेरी सैड डेथ। नेक्स्ट आवर वी शैल बी प्रेजेंटिंग दत्ता वाडकर।
2: Good afternoons with Bali Brahmbhatt. Bali Brahmbhatt is sponsored by Gemin Foods. Tamara tea time no asli hero. Dal bhat, pav bhaji, biryani, namkeen, khakra, chikki, potato chip, mango pal, pani puri, so many varieties for everyone. Marshe tamara najikna Asian shops ma.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
3: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: Can love really be lost? Can home be taken away from someone's heart?
6: ये प्यार जहर की तरह होता है पता? तू आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
7: अमन है इश्क मस्ताना।
5: मैं वापस आऊंगा। A film by Imtiaz Ali.
6: अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 years से देखा तक नहीं।
5: Starring Diljit Dosanjh, Vedanga Reina and Sharvari. Music by A.R. Rahman. Produced by Birla Studios and Applause Entertainment. Main Vapas Aunga in cinemas on the 12th of June.
8: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
9: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
8: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
9: गारंटेड
8: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
9: फोन 0208574-8410।
8: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
10: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.60% on non-withdrawable fixed deposits.
11: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
12: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
13: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
14: स्टेप इनटू द न्यू ग्रैंड शोरूम of Kajal's Couture, Southall.
15: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
14: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
15: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
14: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
16: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
17: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
16: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
17: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
16: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
17: ईमेल नाउ
0: info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
3: London, good news! आपका फेवरेट iTech अब TRS Cash and Carry South Hall में. Huge variety of products including fresh vegetables and fruits with better prices. Perfect for retailers, traders, takeaways and caterers. iTech is open 24/7 with free parking. Full iTech at Unit 123 South Bridgeway, South Hall, UB2 4AX. Once you visit, you come again and again.
18: 6 days to go. Atif Aslam brings his biggest hits live to the O2 on the 14th of June. Grab your tickets at AXS. Exclusive partnership, Leica Radio.
19: Across London, this is Bally Brambat on Leica Gold.

0: इसमें जो प्रेल्यूड था, जिस देश में गंगा बहती है, इसमें इट वॉज द डफ वॉज प्लेड बाय स्टिक्स.
1: लंडन्स बिगेस्ट क्लासिक्स ऑल डे. दिस इज लाइक अ गोल्ड.
0: यह है फिल्म श्रीमान सत्यवादी, जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर थे हमारे दत्ताराम वाडकर. नेक्स्ट आवर उनके कंपोज किए हुए गाने और दूसरे गाने सुनाएंगे. जुड़े रहिएगा.

0: ऐसे गाने सुनकर मन पावन पावन हो जाता है। कहानी कुछ यूं शुरू होती है, सब तकदीर का खेल है। देखो, यू नो, अ चांस मीटिंग दैट रिजल्टेड टू अ लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन। चांस मीटिंग किसके साथ किसकी हुई, सुनिएगा। एक बार शंकर ऑफ शंकर जयकिशन, वो मिले दत्ताराम जी को, दत्ताराम वाडकर को, एक अखाड़े में। अखाड़ा अगर ट्रांसलेट किया जाए तो जिम बोला जाता है। तो अगर आप विकिपीडिया में किधर भी पढ़ोगे तो बोलेंगे जिम में मिले थे, मतलब कि एक अखाड़े में मिलते थे, मिले थे वो, क्योंकि दोनों को रेसलिंग का बहुत शौक था एंड बोथ वर कीन एट लर्निंग हाउ टू रेसल। तो वहाँ पे ये चांस मीटिंग हुई विच रिजल्टेड टू अ लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन। शंकर जी बड़ा प्रभावित हुए उनको मिलकर, एंड देन शंकर जी ने उनको इंट्रोड्यूस किया पृथ्वी थिएटर में, जहाँ पे शंकर जी काम करते थे, वेयर दत्ताराम जी वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लेइंग तबला। नाउ दिस इज वेयर ही वॉज नोटिस्ड बाय राज कपूर जी। नाउ व्हेन द रेगुलर तबला प्लेयर ऑफ अ पर्टिकुलर सॉन्ग इन आवारा, गाना था एक बेवफा से प्यार हुआ, प्यार किया, सॉरी, यू नो, तो इसमें जो रेगुलर तबला प्लेयर थे पंधारीनाथ नागेश्वर, हम तो बोलते पंडित पंधारीनाथ नागेश्वर, जो दत्ताराम जी के पहले फॉर्मल टीचर रहे सिखाने में। सो फिल्म आवारा का ये गाना जब वो रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाए तो दत्ताराम जी को बुलाया गया और उनको कहा कि आप इस पे रिदम कीजिएगा। सो ही प्लेड ऑल द वेरिएशंस सो एफर्टलेसली दैट ही वेंट ऑन टू बिकम द परकर्शन अरेंजर फॉर शंकर जयकिशन, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज द असिस्टेंट विद सेबास्टियन डिसूजा फॉर द शंकर जयकिशन टीम विद इफेक्ट फ्रॉम फिल्म नगीना 1951 की। So when so required, Dattaram used to play tabla and other percussion instruments with equal ease. Itni sifat se wo baja rahe the. And his innovative use of duffli, jo maine aapko gaane sunaye the, Dil Ka Haal Sune Dilwala, and then Hoton Pe Sachai Rehti Hai, wo sticks bajayi thi sticks ke saath. Lekin teesra gaana jo hai, Mera Naam Raju, जिस देश में गंगा बहती है का, वो इस शो के आखिर में आपको सुनाऊंगा मैं। ही प्लेड द डफ विद फिंगर्स, जी हाँ। एंड इनके दो टीचर्स थे इनको सिखाने में। सबसे पहले 1942 में इनकी माताजी के साथ वो जब बॉम्बे पहुँचे, विच वॉज नोन एज बॉम्बे विच इज़ नाउ मुंबई, वो जब पहुँचे तो पहले तीन महीने जब पंधारीनाथ जी ने, नहीं, यशवंत केरकर जी उनके दूसरे एक टीचर थे, उन्होंने उनको मिलवाया हमारे वंडरफुल कंपोज़र, दैट वाज सज्जाद हुसैन जी, उनके साथ इन्होंने तीन महीने गुजारे थे लर्निंग क्लासिकल राग्स, यू नो, उनके असिस्टेंट बनकर। फिर उसके बाद शंकर जी के साथ वो प्ले करने लगे और असिस्टेंट बन गए शंकर जयकिशन जी के। तो दो टीचर थे when he went to Bombay in 1942 with his mother. Did you know his original surname was Shirodkar? Ab mujhe nahi malum ke ye Wadkar kab se ho gaya. To main aapko ek shakhs ke saath baat karaunga, a special person who is going to come on radio to talk to us, and you will get a big surprise in about 2 minutes. Pandit पंधारीनाथ नागेश्वर के साथ फर्स्ट फॉर्मल टीचर थे इनके, और यशवंत केरकर, ही ट्रेन्ड हिम ऑन क्लासिकल तबला, ही वाज अ क्लासिकल तबला टीचर, बाद में उन्होंने सिखाया था इनको। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन दत्ताराम वाडकर, जी हाँ। उन्होंने दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए भी गाने करके दिए थे रिदम सेक्शन, दैट वॉज सलील चौधरी जी। फिल्म मधुमती में इन्होंने तीन गाने इनके लिए कंपोज करके दिए थे। सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, घड़ी घड़ी मेरा दिल धड़के, जो मैंने नंबर वन सॉन्ग दिस आवर सुनाया था आपको, एंड आजा रे परदेसी, आजा रे, वो वाला गाना। सो तीन गाने, एंड देन एक बार क्या हुआ था कि एक ढोलक प्लेयर, रोशन जी के ढोलक प्लेयर, ही वेंट सिक, एंड दत्ताराम जी को बुलाया गया एट द 11th आवर, एंड गाना था, फिल्म थी अजी बस शुक्रिया, उसमें एक गाना था सारी सारी रात तेरी याद सताए, वो अभी आपने जो सुना लास्ट गाना, वो गाना रोशन जी के लिए इन्होंने प्ले किया था। इन्होंने अबाउट 19 फिल्में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर कंपोज किए थे, और ब्यूटीफुल फिल्म्स, मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन सी फिल्म थी। एक मगधी फिल्म, मगधी इज अ वेरी ओल्ड लैंग्वेज जिसमें काफ़ी लोग ये भाषा बोलते हैं, उसकी एक फिल्म की थी, एक मराठी फिल्म, एक भोजपुरी फिल्म। सो दत्ताराम वाडकर की बात कर रहे हैं हम, एंड इट इज़ हिज 19th डेथ एनिवर्सरी। द डेट एक्चुअली इज 7th of June 2007 when he passed away, and जो फिल्मों के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो थी अब दिल्ली दूर नहीं, एंड देन उन्होंने दूसरी फिल्मों में भी जो काम किया था। अभी कल्याण जी आनंद जी, ऑफकोर्स कल्याण जी भाई, देवर व्हेन ही स्टार्टेड डूइंग सोलो म्यूजिक डायरेक्शन, फिल्म थी पीओ बॉक्स नंबर 999 1958 की, उसमें एक गीत था मेरे दिल में है एक बात, जो हमारी लाइब्रेरी में नहीं है लेकिन मैं सुनाता तो आपका दिल खुश हो जाता। और इन्होंने दूसरे गाने जो कंपोज किए थे एज अ म्यूजिक डायरेक्टर, वो मैं आगे जाते हुए आपको सुनाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट सॉन्ग इज़ गोना बी फ्रॉम चोरी चोरी, ये रात भीगी भीगी। लेकिन अब मैं बुलाऊंगा उनको, अभी फोन बज रहा है, अब मैं आपको बता देता हूँ, इनका नाम है शरद वाडकर। शरद वाडकर जी इनके बेटे हैं जो लेस्टर में रहते हैं, दत्ताराम वाडकर जी के बेटे। तो अभी उनसे हम बात करते हैं। हेलो शरद वाडकर जी।
1: जी नमस्ते।
0: द ग्रेट सन ऑफ द ग्रेट दत्ताराम वाडकर जी।
1: नमस्ते नमस्ते
0: अली
1: जी।
0: नमस्ते नमस्ते, मुझे इतनी खुशी हो रही है आपसे बात करके, और लिसनर्स को भी आपकी आवाज़ सुनाने में। आई थैंक्स टू अपना दोस्त जयदेव सोनी, जिन्होंने आपको इन्फॉर्म किया कि मैं ट्रिब्यूट कर रहा हूँ आपके डैडी के। तो
1: थैंक यू फॉर द ट्रिब्यूट टू माय डैडी, एंड मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप और लाइका रेडियो के लिए।
0: शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब आप मुझे इतना बताइए कि आप भी रिदम तो प्ले करते हैं ना?
1: मैं पहले करता था, मैं थोड़ा सीखा हुआ था।
0: अच्छा, आपने डैडी से ही सीखा होगा, नेचुरली आपके गुरु होंगे वो।
1: डैडी से नहीं सीखा मैं, क्योंकि डैडी ने फिर क्या, हम लोग बैंड्रा में रहते थे।
0: हाँ जी,
1: मुंबई।
0: हाँ जी,
1: मुंबई ना बॉम्बे बोलते थे बैंड्रा में, हम लोग रफी साहब के सामने रहते

0: और रिकॉर्डिंग से आते थे तभी तो रफी साहब के घर में तो मैं बहुत बार जा चुका था।
1: अच्छा,
0: लेकिन जब बड़ा हो गया तब तो मुझे मालूम हो गया कि ये रफी साहब है घर के।
1: अच्छा, ये बेटा जो जानता नहीं था उनके डैडी कितने बड़े थे।
0: नहीं नहीं, वो कभी हम लोग को कभी उनकी बात ऐसा कुछ नहीं करते थे।
1: बहुत महान आदमी।
0: घर पे इतने लोग आते थे, शमी कपूर जी वो सब आते थे।
1: अच्छा, तो मुझे
0: देखा है, अभी जब से तुम्हें देखा है डैडी ने म्यूजिक दिया उसमें शमी कपूर से।
1: अच्छा, मैं आपको एक गुजारिश करना चाहता हूँ, आप लाइका स्टूडियो आकर इन हमारे यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू करेंगे।
0: श्योर, लेकिन लंदन में आना पड़ेगा ना।
1: हाँ, क्योंकि हम बैठ के ना फिर उनके बारे में पूरी उनकी कहानी आपसे बेहतर कौन जानता होगा।
0: बहुत बहुत प्राइवेट भी कहानी मालूम भी नहीं है।
1: तो मैं जरूर आपको,
0: इंसान का स्ट्रगल होता है ना।
1: हाँ जी,
0: तो जो मीडिया वाले डालते हैं वो डालते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है एक्चुअली।
1: हाँ, असली कहानी तो आपके मुंह से हम सुनेंगे। सो टू द लिसनर्स, वी आर टॉकिंग टू नन अदर देन शरद वाडकर, हु इज द सन ऑफ हमारे दत्ताराम वाडकर जी। सो उनकी असली ट्रू स्टोरी जो विकिपीडिया में गलत गलत छापी जाती है वो हम आपको बताएंगे। सो आपको मैं संपर्क करूंगा और आप जरूर आइएगा और उनके बारे में बताइएगा शरद जी।
0: जी जी जी। और दूसरी बात है, अभी जैसे वो गाना है ना,
1: हाँ
0: मारो फुल खर्चा।
1: हाँ जी,
0: हाँ उसमें दो तबले बजे, एक करीम लाला ने बजाया, एक डैडी ने बजाया, दो तबले।
1: Oh my God, these are the stories I want to hear. ये सब हमको कहाँ से मिलेगी, ये कहानियाँ सिर्फ आपसे ही मिलेगी। So I'm so lucky, I thank God today के आपसे मेरी।
0: I'm looking actually, you know, हाँ जी, I do appreciate you and I'm following you and I think you are a big person because so humble and you have I think so your other brother or something or something.
1: Bob, मेरा भाई। हाँ,
0: या बॉब, या I think so mama, if she is Gujarat, she knows, so she is living in London.
1: अच्छा,
0: so she, yeah.
1: शुक्रिया। तो आगे मैं बढ़ता हूँ, इनके गाने सुना दूँ, हमारी बातें तो चलती रहेगी। मैं बाद में आपको फोन करूँगा, आपको फोन करूँगा मैं बाद में।
0: कुछ गलती हो तो मेरे से तो माफ कर दो।
1: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप आए, आपका बड़प्पन है, इट्स सो नाइस यू केम ऑन एयर टू टॉक अबाउट इट।
0: सब जो लिसनर्स हैं उनको मेरी तरफ से प्लीज थैंक यू बोलना
1: जरूर,
0: और नमस्ते बोलना।
1: सुन रहे हैं सब, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। व्हाट अ हम्बल पर्सन, एंड ही इज थैंकिंग अस, वी शुड थैंक हिम रियली।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: £1 in British sterling can get you up to 127.3 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. TNCs apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: You're listening to Bali Brahmat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
4: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100 Atoll Protected.
5: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny and we still put cash back in your pocket.
6: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share here and we give the rest back to you as cashback.
5: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs

0: Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: ये गाने जो आप सुन रहे हैं, पिछला गाना जो था अब दिल्ली दूर नहीं, कंपोज्ड बाय दत्ताराम वाडकर, ये है परवरिश फिल्म का गाना, कंपोज्ड बाय दत्ताराम वाडकर, इवन द नेक्स्ट सॉन्ग जिंदगी और ख्वाब का। द ग्रेटनेस ऑफ दत्ताराम वाडकर एज अ कंपोजर एंड

0: Dattaram Vadkar, who composed this song. I'm so proud to have talked to Sharad Vadkar ji today. Hope you enjoyed it.
1: Reminisce those classics on Like a Gold.
0: और ये भी गाना देखो, कहती है झुकी झुकी नजर. सुमन कल्याणपुर जी ने क्या गाया और क्या कंपोज किया हमारे दत्ताराम वाडकर जी ने.

0: 51-year-old Shilpa Shetty, winner of 11 awards totally and nominations for 30 awards, 4 Filmfare awards, and not surprising because she got the Long Island, New York, United States Award, Bollywood Movie Awards for Pardesi Babu. Happy birthday, Shilpa Shetty.
1: Across London, this is Bally Brambat on Like a Gold.
2: तूने अभी देखा नहीं देखा है तो जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम

0: Leica Radio Network. The perfect soundtrack for a British summer heatwave.
1: Gold Afternoons is sponsored by Jemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
3: विजिट TravelHubWorld.com.

0: to all Moshians all over the world.
1: मैं हूं अश्विनी, हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी। फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए।
2: नजर वो जो दुश्मन पे भी मेहरबान हो।
0: सैंडी शॉ नेक्स्ट एंड राज बदन ऑन लाइक अ रेडियो मिडलैंड्स। पाली ब्रह्मभट्ट का नमस्कार।

0: सवाल का जवाब दो ना, बगैर माँ बाप का बच्चा कहाँ से लाए, बोलो ना।
1: मंदिर पहुंचा, एक बच्चा देखा, ना कोई आगे ना कोई पीछे, मैं तरस में आके ले चला उठा के माँ को दे दूं, मंदिर में रख दूं। पंडे ने देखा, वो जालिम समझा, ये पाप है मेरा, बस मुझको घेरा। फिर पुलिस आई, दी लाख दुहाई, वो एक न माना, पड़ गया ले जाना। सोचा ले जाकर फेंकूंगा बाहर, सौ जतन लगाया कोई काम न आया, सड़कों पर बेचा, गाड़ी में फेंका, बन गया ये बंदा इस गले का फंदा। मैं फिर भी टाला, कचरे में डाला, फिर बारिश आई, अंधियारी छाई, बिजली जब कड़की, मेरी छाती धड़की, एक तीर लगा, मैं वापस

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: ये है लाइका गोल्ड। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com लंदन में एक महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिविनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14-21 जून वुडलैंड स्टैनमोर के टेंपल ग्राउंड्स पर फ्री एंट्री सपरिवार अवश्य पधारिए रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें वेन्यू टेंपल ग्राउंड्स वुडलैंड स्टैनमोर HA74LF फॉर मोर डिटेल्स somyagna.com कॉल 07932623852
3: Location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Bedianath with over 100 years of Ayurvedic legacy available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
6: Chalo jaiye ek nava safar par
7: सिरीन हॉलीडेज अपने पूर्व अफ्रिकाना स्थलोनी मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे कंपाला नैरोबी मुंबासा जांजिबार अने दारिसलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स
8: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ
7: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे वधु माहिती माटे
8: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
7: 0116266481 पर वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
12: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
13: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
12: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
14: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
15: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Gold Drive with Sandy Shah.
16: अपने बिजनेस को UK के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें. लाइक आवर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
1: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ. मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच. मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा.

0: जश्न पच्ची बधु ऑलराइट थे जैसे
1: इन सिनेमाज ऑन 12th ऑफ जून फॉर मोर इन्फो विजिट बकरानिया मीडियाज इंस्टाग्राम हैंडल
2: एवू लागे छे के पिक्चर चालछे
3: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhaayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care, available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhaayu, Ayurveda that fits your life.
4: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
5: ऐड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
4: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
6: मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com कॉल 02208767627
7: sonatours.co.uk This September, witness the opening of the BAPS Mandir in Paris on a 4 or 5 day tour. Book your journey of blessings and sightseeing with Sona Tours. Call 0208-951-0111.
8: Gold Drive with Sandy Shah. Oh yeah. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
9: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: क्या बात जी, क्या बात है। आय हाय हाय हाय हाय, 8th of June Monday। जिन्होंने अभी भी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। आय हाय यार, की खबर मिल गई, मेरी आवाज़ सुन गई तो मेरी खबर मिल गई। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे आप सबकी खबर पूछने के लिए, खबर लेने के लिए नहीं। हाँ कैसे हैं आप सब, बढ़िया है ना, होंगे ही मेरे सारे के सारे धुरंधर। देखिए मंडे जो है निकल चुका है, हम आ गए हैं मंडे इवनिंग में। तो हम एक तो सुन बेलिया, मतलब मैं हूँ यहाँ पे सुनने के लिए, ज़रूर सुनाइए कुछ सुनाने लायक है तो। और खबर, जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल खबर, हम लोग एक दूसरे की खबर बताएंगे, शेयर करेंगे, वीकेंड कैसा रहा और अब इस वीक में क्या नया हमारे लाइफ में ऐड होने वाला है। अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है और दीद दनादन सबने इतने गुड स्टूडेंट्स की तरह, गुड चिल्ड्रेन की तरह फटाफट सबने आके अपनी हाजिरी लगा दी कि बाप रे, ये बाद में ये मोहतरमा के अच्छा आज बड़ी लेट एंट्री कर ली, क्या सोचे थे अश्विनी खुश हो जाएगी, शाबाशी देगी दीदी नहीं। ओके आप सबने पूछा भी मेरा वीकेंड कैसा रहा, बहुत ज़बरदस्त रहा, बहुत मस्ती हुई, बताऊंगी उसके बारे में। लेकिन आज आज का दिन जो है बहुत बहुत स्पेशल है, आज का दिन है दोस्ती वाला। आज मनाया जाता है नेशनल बेस्ट फ्रेंड्स डे। तो दिल खोल के अपने बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में मुझे बताइए, मैं कॉल नहीं ले पाऊंगी ना आपके ऑडियो मैसेज सुन पाऊंगी। तो अगर लिख के कुछ बताना चाहते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में, दिल के राज खुलना चाहते हैं, दिल के हाल बताना चाहते हैं, तो आपके दोस्त अश्विनी यहाँ पे हाजिर है आप सबसे गपशप करने के लिए। बताइए अपने बेस्ट फ्रेंड्स के बारे में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can get up to 127 Indian rupees and 30 paise. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win £75 voucher every day when you send over £1,000. Also, 1 gram of gold coin every week when sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show.
2: London's biggest Asian wedding fest and bridal fashion show, KMB with Shanila, brings you stunning bridal collections from leading Afghan, Bangladeshi, Indian, Pakistani and Middle Eastern designers, showcased live on the runway, featuring special guest actress Kubra Khan and a spectacular Qawwali night with Ahmed Shah and group, 12th June at the Willows from 1 p.m. till late. Get your tickets on Eventbrite or call 07989-972-879.
3: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
4: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
3: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
4: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
3: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
8: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
7: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
8: And you didn't pay those massive roaming charges?
7: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
9: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
10: भारत या पाकिस्तान

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: प्यार झुकता नहीं इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में सुना है आपका ओ दिल भर जानिए। दोस्ती के बारे में बातें हो रही हैं और सब लोग अपने दिल के राज जो है मेरी तरफ खोलते जा रहे हैं। दोस्ती कितना प्यारा रिश्ता है ना। अब कहीं ना कहीं आपका और मेरा भी तो ये दोस्ती वाला रिश्ता शुरू हो गया है ना। जब से मैं शोज़ रेगुलरली कर रही हूँ तो आप और हम जो हैं अब एक दूसरे को काफ़ी हद तक जान चुके हैं, जानते हैं कि नहीं, है ना। तो आज का दिन जो है, जैसे मैंने कहा कि मनाया जा रहा है दोस्ती वाला दिवस, फ्रेंडशिप डे इज डिफरेंट, इट्स बेस्ट फ्रेंड्स डे, है ना। फ्रेंड्स होते हैं हमारी लाइफ में, लेकिन बेस्ट फ्रेंड्स जो होते हैं उनका और हमारा जो ये एक रिश्ता होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। आई एम लकी दैट आई हैव अमेजिंग फ्रेंड्स इन माई लाइफ एंड आई हैव अमेजिंग बेस्ट फ्रेंड्स इन माई लाइफ। दे आर माई स्कूल फ्रेंड्स। और बचपन से जब आपकी जर्नी आपके उन दोस्तों ने देखी होती है ना, तो आपके उस रिश्ते में कोई भी कड़वाहट, कोई भी जेलेसी, कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं होती। अच्छा, ऐसा नहीं कि स्कूल की ही मेरी जो फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड जो हैं वही बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन ज़िंदगी के आगे जैसे जैसे मैं पड़ाव में बढ़ती चली गई, मुझे यहाँ पे लंदन में भी मेरी फ्रेंड्स वो मिली जो आधी ज़िंदगी कटने के बाद मिलती हैं, एंड उनके साथ में भी मेरा बेस्ट फ्रेंड वाला नाता है। सो मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ और मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है वो भी सुन रही हैं शो को, तो भाई हैप्पी बेस्ट फ्रेंड्स वाला डे आपको भी। और हमारी ये दोस्ती ना इतना प्यारा और इतना प्योर रिश्ता होता है ना, जैसे मैंने कहा कि जब आप एक दूसरे के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचते हैं, भला सोचते हैं, और वहाँ पे जब आपको पता होता है कि यार ये जो है ना, ये जो इंसान है इसके सामने बेपरता होकर मैं बात कर सकती हूँ, मैं जज नहीं होने वाली किसी भी चीज़ को, अगर मैं गलत हूँ तो ये आके मेरे कान पकड़ेगी, दो फटके भी देगी, फटके इज मराठी वर्ड, ऐसा सच कोई फटके देता नहीं है, दैट्स अ वे वी से इन फ्रेंडशिप। एंड जब हमारे लिए कुछ अच्छा होता है तो वो अच्छे सजेशंस भी देंगे। दोस्ती क्या यार, दोस्ती में ना एक्सेप्टेंस है। बाकी जो रिश्ते हैं ना हमारे, उसमें कहीं ना कहीं हम कंडीशनल हो जाते हैं। आपको क्या लगता है? अच्छा, आज ना दिल खोल के दोस्ती वाले इस रिश्ते पे बात होने वाली है। मेरे हिसाब से दोस्ती में एक्सपेक्टेशन आती है, मैं ना नहीं कह रही कि नहीं आती, लेकिन उसमें ना हम एक दूसरे को बदलने नहीं चाहते हैं, हम सजेस्ट करते हैं, लेकिन बाकी सब रिश्ते में ना जाने क्यों हम एक दूसरे को बदलने लगते हैं। आपको क्या लगता है? आइए आइए आइए हुजूर, जो हुजूर आते आते देर कर रहे हैं उनके लिए भी आते चलिए। स्वागत है आपका इस शो में जिसका नाम है द इवनिंग शो विद अश्विनी। और साथ में वही किशोर कुमार फैंस, देखो ना इस वीक हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक भी किशोर कुमार हैं। तो किशोर कुमार फैंस, गेट रेडी फॉर क्रेजी फॉर किशोर, अ स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग जॉय इंद्रायणी, संजय विद हिनल एंड 515 बैंड। इट टेक्स प्लेस ऑन फ्राइडे 19th जून एट द प्रिंस रीजेंट होटल चिगवेल एसेक्स। Tickets available at eventbrite.co.uk or call 020-8514-5400. Exclusive radio partner, Leica Gold Radio.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: The Evening Show with Ashwini.
4: होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।
5: यादों की बारात।

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 36 मिनट्स पास्ट 7। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी। अच्छा, वीकेंड के बारे में सभी मुझे पूछ रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था फ्राइडे आप सभी को दैट आई विल बी एंकरिंग फॉर वाद्य महोत्सव। एंड लेट मी टेल यू, आई एम स्टिल इन दैट जोन ऑफ दैट वाद्य महोत्सव। सो 108 ढोल वहाँ पे थे एंड ताशा जो होते हैं दैट इज वो ऑल्सो नियरली 100 ताशा, 3000 प्लस पीपल। पूरे 5 घंटे जो है, आधा टाइम आई वॉज ऑन स्टेज, वहाँ से अनाउंसमेंट हो रही थी, उसके आधे टाइम मतलब आधे इधर आधे उधर जो मैं डायलॉग बोलती हूँ ना, वैसे आधा टाइम ऑन स्टेज एंड आधा टाइम व्हेन आई केम ऑन द ग्राउंड विद ऑल द ढोल ताशा, जो जितने भी वो ग्रुप्स आए थे उन सब के साथ में इंटरेक्शन तो हुई। साथ में 3000 प्लस पब्लिक पूरे स्टैंड में बैठी थी, चेयर लगाई गई थी। एंड जो एक जज्बा होता है ना जब आप लोग कहीं आते हैं किसी इवेंट को देखने के लिए, तो छाते वाते रेन कोट लेके सब आए, बारिश जो है छमछम करती वर्षा रानी आ रही थी बीच बीच में, पर हमने भी कहा कि नहीं, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। एंड बहुत बहुत बहुत सुंदर वो पूरा का पूरा जो है वो इवेंट रहा, SVRT UK ये जो टेम्पल के लिए ये इवेंट रहा, इसमें लाइका ने भी अपना बिल्कुल योगदान दिया हुआ है, तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा साइट पे, बहुत बहुत सुंदर उसने हमने क्लिप्स वहाँ पे डाली हैं। सभी लोग अपने अपने दोस्तों के बारे में बता रहे हैं, बिल्कुल अपने बेस्ट फ्रेंड्स का नाम बताना चाहते हैं बता दीजिए। वैज यू सेड कैन यू शाउट आउट फॉर माई फ्रेंड आमिर, आमिर आपके दोस्त आपके नाम से चिल्ला रहे हैं देखो अगर मैं इसको ट्रांसलेट करने चाहूँ तो बिल्कुल बता दीजिए। अंजलि अंजू माई बेस्ट फ्रेंड इन लंदन वो मुझे सुन रही हैं, माई बेस्ट फ्रेंड दिशा इन वॉशिंगटन वो मुझे सुन रही हैं, माई फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड चैताली वो मुझे पुणे में सुन रही हैं, एंड माई बेस्ट फ्रेंड इन मुंबई ममता सोनाली वो भी मुझे सुन रही हैं। बहुत सारी बेस्ट फ्रेंड्स हैं मेरी, तो इसके साथ में जो फ्रेंड होती है जो आपके बहुत करीब होती है उन सबको भी आज वाला आज का दिन मुबारक है ना। दोस्ती पे एक गीत सुनाऊं आप लोगों को या अंडरस्टूड है ना, चलते हैं आगे।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Ashwini in for Anisa Nazir on the evening show.
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
3: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस,
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट travelhubworld.com।
4: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
5: Atif Aslam live in the UK.
4: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
5: Book your tickets now at AXS.
4: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: Attention meat lovers of Rayner's Lane.
7: This is huge.
6: Tariq Halal is opening in Rayner's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
7: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
6: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
7: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rayner's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
6: Tariq Halal, Rayner's Lane. There is only one.
8: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Leica Radio.
9: गड़बड़ घोटाला छे, problems मोटा छे, पर बदु ऑलराइट छे।
10: नेचे ने back to back त्रण movies जोई ली थी।
9: Get ready for a full on comedy chaos with Veeraj Ghelani and Umang Vyas in the movie बदु ऑलराइट छे।
10: बेहतर कलकमल पाचो आवे, yes ने पच्ची बदु ऑलराइट थे जैसे।
9: In cinemas on 12th of June. For more info, visit Bakrania Media's Instagram handle.
11: ये वो लगे छे के picture चल्च।
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
12: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
13: From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
7: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Coach, Eurostar, your flight. Aap choose karo, apna style. Baki sab, Star Tours experience sambhal leta hai. Visit startours.co.uk.

Welcome, this is the second hour of the evening show with Ashwini on Laika Gold Radio in London and Laika Radio in Greater Manchester. Beautiful tracks, है ना? पहला गीत आपको सुनाया जान फिल्म से 1996 में, तो 90s वाले बच्चे ऐवें ही खुश हो गए होंगे, और दूसरा है लता मंगेशकर की आवाज़ में अगर तुम ना होते तो 80s वाले बच्चे खुश हो गए होंगे। कुल मिला के जिनको 90s 80s के गाने पसंद है आप सभी खुश हो गए। 8:11, इट्स 11 minutes past 8, आप सभी ने ट्यून इन किया है आपका अपना वाला शो। अब मैं आपको अपना वाला शो क्यों बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस शो में बिल्कुल आइए अपने मन मर्जी की बात करिए। वीकेंड पे कुछ हुआ, ऐसी कुछ चीज़ हो रही है जो आपको अंदर ही अंदर सता रही है, कोई बात करने के लिए नहीं है। अरे मैं हूँ ना, बस बहुत दुख दर्द पीड़ा लंबा लंबा ना लिखें, छोटे से शॉर्ट में ज़रा बताइए। अगर मैं आपको हेल्प कर सकी तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगी। अब हमारा जो सेगमेंट है गुड न्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा, तो ऐसी न्यूज़ हमें बात करनी चाहिए ना, एक दूसरे को बताना चाहिए। क्योंकि आज आके जब हम सिर्फ वॉर की न्यूज़ सुनते हैं तो हमें लगता है कि अरे यार दुनिया में और भी कुछ चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, तो नहीं, बिल्कुल दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं जिनके बारे में हमें एक दूसरे को डेफिनेटली बताना चाहिए। सो इन कैनेडा डॉग्स गेट पिक्ड अप बाय अ बस एंड टेकन टू डे केयर सो दे कैन प्ले इंस्टेड ऑफ स्टेइंग होम अलोन। अरे यार यहाँ पे कहीं हो तो प्लीज़ बताओ, ऐसे कोई डॉग स्कूल हो तो मुझे ढूंढना चाहिए। मेरे यहाँ पे है ना मेरी पीचेस, आप सभी जानते हैं उसको, अभी उसको भी ऐसे फ्रेंड्स मिल जाएंगे तो सच में बढ़िया हो जाएगा। और साथ में स्पेन बिकम्स द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू अप्रूव पेड मेंस्ट्रुअल लीव फॉर वर्कर्स सफरिंग फ्रॉम सीवियर पेन, दैट्स रियली फैंटास्टिक। फ्रांस बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू फोर्स सुपरमार्केट्स टू गिव अनसोल्ड फूड टू द पुअर। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिनके बारे में हमें बात करते रहना चाहिए और जिसके बारे में बताना चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डॉक्टर इन साउथ अफ्रीका बिकेम द फर्स्ट टू रिस्टोर हियरिंग यूजिंग 3D प्रिंटेड ईयर बोन्स। हेल्थ सेक्टर में इतना अच्छा काम किया जा रहा है और वो हम तक पहुंचा नहीं क्योंकि हमें वो न्यूज़ पता ही नहीं होती। द रिकवरी ऑफ द ओजोन लेयर इज हैपनिंग एट अ फास्टर पेस देन एक्सपेक्टेड विद अ प्रोजेक्शन ऑफ रिटर्निंग टू नॉर्मल लेवल्स बिटवीन 2040 एंड 2066। In Netherlands, they have created a village for people with dementia where caregivers play the roles of neighbors and shopkeepers to avoid a hospital-like atmosphere. Now, this was so very thoughtful. ऐसी नई नई आइडियाज़ जब लोगों को आती हैं तो जो पेशेंट्स होते हैं, जो केयर गिवर्स होते हैं, उनके लिए भी एक एटमॉस्फेयर कितना अलग हो जाता है ना? ओके, नेक्स्ट ट्रैक जो आपको सुना रही हूँ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, बैराग फिल्म से, 1976 के फिल्म है। वॉल्यूम अप रखना चाहते हैं? चलो अब ये गीत ये मत मुझे मत बोलना कि अश्विनी सारे शहर में आपसा कोई नहीं। London's biggest classics all day. Laika Gold.

0: इमोशन ऑफ द डे में आज मोटिवेशनल मंडे। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले हैं ना। हम सभी के साथ में स्टोरी तो सिचुएशन तो वही है, कितने भी अप्स एंड डाउन्स आ जाए लेकिन हम अपनी जज्बे के साथ जो ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं और उसके साथ में जब हमें ही अपने अलग अलग रूप दिखते हैं ना तो हम सोचते हैं अरे वाह, अच्छा ये भी था मुझ में, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतना हिम्मत वाला हूँ या इतनी हिम्मत वाली हूँ। तो देखिए ज़िंदगी का ग्राफ जो है ना, वो जो मॉनिटर होता है ना जो हॉस्पिटल्स में लगा होता है कि इंसान जिंदा है या फिर चल बसे, तो जो ग्राफ अप एंड डाउन जाता है दैट इज़ अप्स एंड डाउन्स ऑफ अ लाइफ। और जब वो लाइन सीधी चलने लगती है यानी कि ज़िंदगी ख़त्म, तो अप्स एंड डाउन्स के साथ में अगर ज़िंदगी आएगी तो मज़ा है। बहुत खुशी रहे तो भी प्रॉब्लम है, बहुत दुख रहे तो भी प्रॉब्लम है। ओके, कोई चीज़ अगर परमानेंट है वो है चेंज। तो आज अगर बुरे दिन हैं तो बहुत दिन नहीं रहेंगे, ये समय भी निकल जाएगा। बस इस पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ते चलिए। दैट वॉज द मोटिवेशनल मंडे वाला ट्रैक। आगे आपके लिए और भी खूबसूरत ट्रैक्स लाइंड अप है। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी।
1: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a Gold in London, the Midlands and Manchester.
0: Live in Relationship, episode number 19, which is hosted by Radio Wali. Are live in relationships still a taboo in our culture? Are live in relationship just a trial round before marriage? बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पे बहुत सारी डिस्कशन हुई है यहाँ पे इस पॉडकास्ट में, जरूर देखिएगा। Like extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
2: Like extra is here. This is Ashwini, in for Anisa Nazir. On the evening show.
3: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट travelhubworld.com।
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
6: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
7: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 0203-776-333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
8: गड़बड़ घोटाला छे, प्रॉब्लम्स मोटा छे, पण बधु ऑलराइट छे।
9: મે છેને બેક ટુ બેક 3 મૂવીઝ જોઈ લીધી।
8: ગેટ રેડી ફોર અ ફૂલ ઓન કોમેડી કેઓસ વિથ વીરજ ગેલાણી એન્ડ ઉમંગ વ્યાસ ઇન ધ મૂવી। બધુ ઓલરાઇટ છે,
9: બે ત્રણ કલાકમાં પાછો આવી જશે ને પછી બધુ ઓલરાઇટ થઈ જશે।
8: ઇન સિનેમાઝ ઓન 12th ઓફ જૂન। ફોર મોર ઇન્ફો વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયાઝ ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ।
10: એવું લાગે છે કે પિક્ચર ચાલશે।
11: Hey, friends के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ Netflix and chill, a desi tadka is total risk, है ना?
12: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips, crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
11: Crunch cannot wait, so visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods Potato Chips now.
13: आ सितंबर पेरिस मा इतिहास लखाई रह्यो छे।
14: BAPS मंदिर नो ओपनिंग अने स्टार टूर्स तमने लई जई रह्यो छे आ पवित्र यात्रा पर।
13: यूरोप ना 3-9 दिवस ना टूर्स,
14: फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली અને જર્મની સાથે
13: દર્શન પણ અને યુરોપ પણ।
14: સીટ્સ જલ્દી ભરાઈ રહી છે, આજે જ બુક કરો સ્ટાર ટૂર સાથે।
13: કોલ 0208900-2323 ધ સ્ટાર ટૂર્સ।
14: ટ્રાવેલ વન્સ એન્ડ યુ વિલ ટ્રાવેલ અગેન એન્ડ અગેન।
15: ઇયર્સ આર ગ્રેટ, આર્ન્ટ ધે? વન ઓન ઈચ સાઇડ ઓફ યોર હેડ ફોર સ્ટીરિયો। ઇટ્સ બીકોઝ ઓફ ઇયર્સ ધેટ રેડિયો એડ્સ કેન એમ્પ્લીફાઈ યોર એડવર્ટાઇઝિંગ। 40 મિલિયન એડલ્ટ્સ લિસન ટુ કમર્શિયલ રેડિયો એવરી વીક, ધેટ્સ 80 મિલિયન ઇયર્સ ગિવ ઓર ટેક। See radio differently at radiocenter.org.
2: Like a radio network. Proud
16: proud hospitality partner, Ragasan.
17: This week's Like Extra podcast, Radio Valley talks to special guests about being South Asian and in a living relationship.
18: It's always a gamble. Life is a gamble. Marriage is a gamble. Relationships are as well. It can change within the year you meet somebody. Yeah. It can change within the year after you get married. It could change 25, 26 years after you're married. Anything can happen. Anything is possible.
16: Like Extra is here. Search for our podcast, Like Extra, on all major streaming platforms. Ashwini, brightening up your weeknights.

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ, 46 minutes past 8. आप सभी ने ट्यून इन किया है Like a Gold Radio in London and Like a Radio in Greater Manchester. This is the evening show with Ashwini. Monday से Friday रहता है आपका मेरा साथ, शाम 7 से 10 बजे तक. एक तो first of all I want to say this to all of you. एक तो आप लोग बड़े sweet हो, दूसरा बड़े attentive हो. मतलब मैंने अगर कुछ कहा तो उसके ऊपर आप लोगों के फटाफट से जवाब आना शुरू हो जाते हैं. आप में से कितने लोग कहते हैं कि हमने तो टीवी देखना छोड़ दिया, हम लोग शाम में जो है तुम्हारा शो सुनते हैं और बड़े खुश होते हुए मुस्कुराते हुए हम गीतों को एंजॉय करते हैं. यही तो इम्पोर्टेंट है ना. दिन भर की थकावट जो है गीत संगीत के साथ में जब वो मिटे तो कितना सुंदर एहसास होता है. नेक्स्ट दो ट्रैक्स आपके लिए लेके आई हूँ मैं. बड़े खूबसूरत ट्रैक है वक्त फिल्म से, महेंद्र कपूर की आवाज़ में एंड आशा भोसले जी ने उनका साथ दिया है दिन है बहार के. एंड द लास्ट ट्रैक ऑफ दिस आवर विल बी मुकेश जी की आवाज़ में आशिक फिल्म विच वॉज रिलीज इन 1962. मैं आशिक हूँ बहारों का. इतने सुंदर ट्रैक्स और इतनी बढ़िया बढ़िया आवाज़ें जब सुनते हैं ना, और वेरिएशन कितनी है सुनने में. जी हाँ, तो हमारे कुछ लेट कमर्स अभी भी आए हैं और गुड इवनिंग अश्विनी कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है. हुजूर आते आते बहुत देर कर दी. चित्रार का गीत था ना, याद आ गया ना अभी. नेक्स्ट आवर में और भी मस्ती मजा होने वाला है. आज गजल सुनाऊंगी या कवाली जरूर लिख के बताइएगा.
1: लाइक अ गोल्ड लंदन का नंबर 1 एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 9:16। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। उदित नारायण की आवाज में राजा हिंदुस्तानी से आए हो मेरी जिंदगी में, क्या बात है, बहुत रिफ्रेशिंग लगता है ये गाना मुझे, ना जाने क्यों। सेकेंड इज आज रपट जाए तो किशोर कुमार एंड आशा भोसले की आवाज में नमक हलाल से। अच्छा इस गीत को लेकर ना, ये गीत मुझे बड़ा पसंद था, एक तो स्मिता पाटिल और अमिताभ बच्चन, व्हाट अ फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टर्स। एंड मेरी आई को ये गाना बिल्कुल पसंद नहीं था, मेरी मम्मी को, और मुझे ये बड़ा पसंद था। तो उस पर ना हम लोगों की थोड़ी एक दो लड़ाई झगड़ा होता था, नॉट लड़ाई झगड़ा ऐसा तो झगड़ा, बट ऑब्वियसली जब आपके फेवरेट सिंगर्स होते हैं तो आप उनके बिहाफ पे आइदर रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ये कहने में जुट जाते हैं कि ये जो सिंगर है ये कितनी प्यारी और कितनी वर्सटाइल सिंगर है। विथ मी आई एम अ बिग बिग फैन ऑफ आशा भोसले एंड माई आई वॉज अ बिग फैन ऑफ लता मंगेशकर। क्या आपके घर में भी ऐसे होता है कि आप लोग सिंगर्स को लेके इतना डिस्कशंस करते हैं?
1: Ashwini, brightening up your weeknights. ये है Like a Gold. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1 in British sterling, you can get up to 127.30 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win £75 voucher every day when you send over £1,000 and 1 gram of gold every week when you're sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: The Evening Show with Ashwini.

0: updates for London at Breakfast and Drive.
1: So, you're geared up for this Making Tax Digital thing?
2: Sure, I just need some new mud boards, bag of cavity tyres and a couple of lintels.
1: Hey, MTD mate, digital taxes.
2: Mm-hmm. It's an extension down Station Road on the corner.
1: Dave, digital taxes mate.
2: Yeah, probably will need some 2x4s. I've got to take the van in for a new fan belt, squeaky.
1: Hey, Making Tax Digital, Dave.
3: Avoiding MTD. Sage makes tax simpler for sole traders. Search Sage MTD to get your free software today.
0: This is Ash Winnie, in for Anissa Nazir, on The Evening Show.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
5: फोन 0208574848।

0: good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
2: आर्टिस्ट ऑफ द वीक में किशोर कुमार की आवाज़ में आपने जॉनी मेरा नाम इस फिल्म से सुना, ये फैंटास्टिक ट्रैक। इस गाने का मुझे एक्चुअली फैसिनेशन क्या लगता है, उसमें कितनी सारी खिड़कियां बताई है ना देवानंद एंड हेमा मालिनी पे ये गीत फिल्माया गया था। एक खिड़की, दो खिड़की, मुझे तो लगता है अगली बार कभी ऐसे हो जाए ना। अच्छा, आप लोग जितने लोग अभी फिलहाल ये सुन रहे होंगे, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, ये वाला जो गीत है ना, इसमें कितनी खिड़कियाँ दिखाई गई हैं। आप और मैं मिलके ये टास्क लेते हैं, ठीक है, जब हमें ध्यान में आए कि कितनी खिड़कियां हैं टोटली। अब पूरे सप्ताह भर आप और हम लोग मिलते रहते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कल शाम में अगर बता सकते हैं तो बता दीजिएगा कि कितनी खिड़कियां इसमें हैं। नेक्स्ट इज टुडेज गज़ल। मंडे है भाई, आज कवाली कैसे आ सकती है, आज तो गज़ल आएगी, है ना। सो आज गुलाम अली जी की आवाज़ में निकाह फिल्म से सुना रही हूँ आप सभी को ये गज़ल।

0: What a lovely track. लता मंगेशकर की आवाज में गाइड फिल्म सुनाया आप सभी को ये गीत. टिक टिक करते हुए घड़ी अब कुछ कह रही है ना ना रुक में जरा हो जाए और कुछ उसके बाद में एक फाइनल टाइम चेक करते हैं.
1: This is Ashwini in for Anisa Nazir on the evening show. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: विजिट travelhubworld.com.
3: Location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
6: Atif Aslam live in the UK.
7: Dil diya galla karange na.
5: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
6: Book your tickets now at AXS.
5: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
6: Exclusive radio partner, Leica Radio.
8: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall.
6: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
8: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
6: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajul's Couture, now open 7 days a week.
8: Gajul's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
9: गड़बड़ घोटाला छे, प्रॉब्लम्स मोटा छे, पण बधु ऑलराइट छे.
10: મે છેને બેક ટુ બેક ત્રણ મૂવીઝ જોઈ લીધી.
9: ગેટ રેડી ફોર અ ફૂલ ઓન કોમેડી કેઓસ વિથ વીરજ ગેલાણી એન્ડ ઉમંગ વ્યાસ. ઇન ધ મૂવી બધું ઓલરાઇટ છે.
10: બેટર કલાકમાં પાછો આવી જશે ને પછી બધું ઓલરાઇટ થઈ જશે.
9: ઇન સિનેમાઝ ઓન 12th ઓફ જૂન. ફોર મોર ઇન્ફો વિઝિટ બકરાનિયા મીડિયાઝ ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ.
11: એવું લાગે છે કે પિક્ચર ચાલશે.
12: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
13: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: For £1, you'll get 127.72 Indian rupee, 371.57 Pakistani rupee, 449.39 Sri Lankan rupee, 163.64 Bangladeshi taka, 83.38 Afghani.
14: Leica Radio.
13: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
14: Leica Gold.
13: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £104.44 per gram.
13: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
0: मिला लेंगे एक बार घड़ियां देखते हैं टाइम कितना हुआ. इट्स 45 मिनट्स पास 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. मंडे से फ्राइडे रहता है आपका और मेरा साथ शाम 7 से 10 बजे तक. 3 घंटे मस्ती मजाक गपशप इंटरेक्शन सीरियसली अब बहुत बहुत मज़ा आता है मुझे आप सबके साथ में यहाँ पे. एक तो मेरी असाइनमेंट्स, क्वेश्चन आंसर सेशन आपके हमारे जो चलते हैं, मस्ती मज़ा होता है. आप अपनी दिल की बातें सुनाते हैं, कुछ अच्छा हुआ है वो बताते हैं, कुछ बुरा हुआ वो बताते हैं, कुछ शेयर करना है वो बताते हैं. ये जो विश्वास आप लोग सब मुझ पर दिखाते हैं ना, तो आपकी और हमारी ये दोस्ती बड़ी लंबी चलने वाली है ना. तो यस, आज बेस्ट फ्रेंड डे है. अगर आपके पास बेस्ट फ्रेंड है तो उसे ज़रूर विश कीजिए. और बेस्ट फ्रेंड थी था और आप उसके कॉन्टैक्ट में नहीं थे, तो उठाइए फ़ोन, घुमाइए फ़ोन और अपने उस दोस्त से फिर से कनेक्ट कीजिए. बहुत बहुत प्यारा रिश्ता होता है ये. और हमेशा की तरह यही बात कि भाई प्यार तो प्यार लो, प्यार ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए है ना. और आप सब पावर का यूज़ पक्के में नहीं करते, इतना मुझे विश्वास हो गया है अभी. लाइफ इज ब्यूटिफुल, उसे कॉम्प्लिकेटेड ना करें. अपनी हेल्थ का खूब ख्याल रखें. कल मिलेंगे टेरिफिक ट्यूसडे में आप और हम. ऑन दैट नोट आई हैव टू से प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. लव यू ऑल. नाउ आई हैव टू से बाय.
15: ये है लाइका गोल्ड.
16: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
17: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. Tours by coach, Eurostar or flight. We give you the option, you choose what works best for you. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: Experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
3: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our रेडियो
4: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदा बहार गीत।

0: Nightly Hits. Gold Nights. This is Like a Gold.
1: Hi, hello, okay. Chho, ho, chho, kethi, dawayana, ah, shun, chayko. Arara, public demand. Hariti, aavi, nahi, chho, London, maru, nao, nagline. Patni Premier League, it's like a PPL, yes. From 3rd July till 12th of July. Wow. And this is being presented by Pankaj Soda Galaxy Shows. Yaad rakhjo.
2: Patni Premier League. Shows at Risley, Alberton, East and South London, Lower Home, Leicester. For more information, call Deepa on 07947561947.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, like our radio.
6: गड़बड़ घोटाला छे, प्रॉब्लम्स मोटा छे, पर बधु ऑलराइट छे।
7: मे छे ने बैक टू बैक थ्रन मूवीज जोई ली थी।
6: गेट रेडी फॉर अ फुल ऑन कॉमेडी कियोस विथ वीरज गेलानी एंड उमंग व्यास इन द मूवी बधु ऑलराइट छे।
7: बेहतर कलाकार पाछो आवे जैसे ने पछी बधु ऑलराइट थई जैसे।
6: इन सिनेमास ऑन 12th ऑफ जून। फॉर मोर इन्फो विजिट बकरानिया मीडियास इंस्टाग्राम हैंडल।
8: एवू लागे छे के पिक्चर चालछे।
9: इयर्स आर ग्रेट आर्न्ट दे? वन ऑन ईच साइड ऑफ योर हेड फॉर स्टीरियो। It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
10: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
11: Relax, I've booked the Uber already.
10: How? My roaming isn't even working yet.
11: I switched to Simzy before we left London.
10: Simzy? Since when are you the tech expert?
11: Since I decided I want a stress-free holiday.
12: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
11: T's and C's apply.
13: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
14: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
15: लाइका गोल्ड पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।